मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जदे पढ़ू था दरूद सजन से पान दरूद बुधन था, यानी जब भी हम सरकार पे दरूद भेजते हैं वो हमारा दरूद समाप्त फरमाते हैं। ये हमारा अकीदा है। ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। समाप्त।

पता चल जाए, उनको भी पता चल जाए। इस पिंडाल में मौला अली के आशिक बैठे हैं, बावाज़े बुलंद। मैंने वापस सिंध जाना है, आपकी आवाज सिंध तक मेरे कानों में गूंजती रहे, बावाज़े बुलंद।

अभी उतनी आवाज नहीं आई। महफिल वाला पता नहीं कहाँ बैठा है, मैं तो जानता किधर है, सारे ही महफिल वाले हाँ ये जितने स्टेज पे बैठे हैं इनको इतनी आवाज सुनाए, इतनी आवाज आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जितनी ये आशिक अब निकालेंगे। समाज फरमाए बावाजे बुलंद, जितनी अल्लाह ने जान में ताकत दी है उतनी जान के साथ मौलाली के नारे का जवाब देना है। बावाजे बुलंद हैदर बरगा सकीन कोई।

0: आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकूं ऐं ज़रख़ेज़ी असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिं जो मोतीअ जहिड़ो दाणो, छटाई करण में आसान, ॿिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अवां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
9: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
10: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
7: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखंदा था निजामानी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलिल रहंदो। निजामानी मेडिकल सेंटर ते ओटी लेबोरेटरी आई फार्मेसी जी सहूलत मौजूद आहे। निजामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
11: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
9: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
11: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
9: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
11: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
11: 0331-252-5786।
9: जी हा, 231-525-786।
11: GAFM रेडियो नेटवर्क
9: सिंध जो आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाई।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली। खुशखबरी
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
3: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
6: सुनते रहो GFM 90.4।
7: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
8: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
8: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
7: 03125252786।
8: जी हा 2311-2525-786।
7: GFM रेडियो नेटवर्क
8: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं
1: जी ए सिंध की आवाज़।
2: खुश लाड़काने जो मशहूर है मेडिकल।

0: ਮਿਊਜ਼ਿਕ
1: ਸੁਬਹ ਮੈਂ ਐ ਰੋਸ਼ਨ ਸੁਬਹ ਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਤੇ ਪਿਆ ਜੀ ਐਫ ਐਮ 88 ਜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਐ ਮਾਵਾ ਜੋ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੁਣੇ ਜੋ ਸਾਈਂ ਮੁੰਹਿੰਜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਨਿਅਲ ਹਕੀਕਤ ਆਹੇ ਤਾਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਜੇਕਾ ਖੁਰਾਕ ਆਹੇ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਕੇ ਵਧਣ ਖਾਂ ਰੋਕਣ ਮੇਂ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇ ਥੀ ਐਂ ਯਾਦ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਜੇ ਵਧਣ ਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਕਤ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦੋ ਆਹੇ ਜੇਕਡਹਿਂ ਸ਼ੁਰੂ ਮੇਂ ਹੀ ਉਨਖੇ ਰੋਕਿਓ ਵਨੇ ਤਾਂ ਖਤਰੋ 99% ਘਟਜੀ ਵੇਂਦੋ ਆਹੇ ਤਜਰਬਨ ਮਾਂ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਗਾਲ੍ਹ ਥੀ ਚੁੱਕੀ ਆਹੇ ਤਾਂ ਸਾਇਓ ਭਾਜੀਓ ਐਂ ਮੇਵਾ ਕੈਂਸਰ ਜੇ ਖਤਰਨ ਕੇ घट करण में अहम किरदार अदा कन थियूं छो त भाजियुन ऐं मेवन में कैंसर जो दिफ़ा करण जी चङी ख़ासी सरहत मौजूदु आहे मेवन ऐं भाजियुनि में मौजूद जेको आहे सो सलाहियतूं आहिनि कैंसर जे जरासीमनि खे हमिलो करण खां अॻु ई क़ाबू करे वठनि था ख़ासि तौर ते बसर थूम लीमा बंद गोभी टमाटा अंगूर ऐं सूफ़ तमामु घणो मुफ़ीद साबित थिया आहिनि छो त हमेशह साईं जा अव्हां खे हिकड़ी ॻाल्हि ॿुधाईंदा हलूं त कैंसर काई बि हिकड़ी बीमारी कोन्हे का जेको हिकड़ो कैंसर जी बीमारी जो भउ आहे हिकड़ो वॾो धाको आहे पर हक़ीक़त में इहा आहे त कैंसर का अहिड़ी वॾी बीमारी कोन्हे पर असुल नालो आहे त उहो ज़ख़्म जेको नश ॾे उनखे असां पाण कैंसर जो नालो ॾिनो आहे बाक़ी कैंसर ख़ुदि का बीमारी कोन्हे उन करे असां अॼुकल्ह खाइण पीअण में थोरो एहतियात कयूं ॿाहिरियां जेके फास्ट फूड जा खाधा आहिनि ऐं बेकरी आइटम जेके आहिनि उनखे असां घटि करे असां पंहिंजा सादा आइटम जेके सब्ज़ी वारा खाऊं असां सायूं भाॼियूं खाईंदासीं पंहिंजो ताज़ो फ्रूट इस्तेमालु कंदासीं त असांजे जिस्म में कुवत मुदाफ़त पैदा थींदी ऐं जिस्म ताक़त वठंदो त हुनजे कैंसर जे जरासीमनि ते हमिलो ज़रूरु थींदो तंहिं करे कोशिशि कयो सायूं भाॼियूं खाओ सुठा ताज़ा मेवा खाओ त असां काफ़ी बीमारियुनि खां बची सघूं था।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

जी आसमिन, असांजो हिन हफ़्ते जो सवालु आहे तमामु आसान सवालु आहे ऐं अव्हां खे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं। अव्हां थोरी कोशिश कयो, ज़ोर ॾियो, ज़िन ते ज़ोर ॾियो ऐं कंहिं खां चवंदा आहिनि त पुछणो न मुंझणो, ऐं तव्हां ज़रूरु कंहिं पंहिंजे वॾे खां, कंहिं दोस्त पहिरीं प्यारे खां बि तव्हां मालूमात वठी सघो था, तव्हां पुछी सघो था त असांजी तमामु सुहिणी सिंध जो सुहिणो शहर उहो कहिड़ो आहे जंहिंखे हिकु अखि कान्हे का। जी हा, आसान तमामु सवालु आहे, उहो सिंध जो कहिड़ो शहर आहे जंहिंखे हिकु अखि कान्हे का। तव्हां सवाल असांखे ॿुधाए सघो था SMS ज़रिए, फेसबुक ज़रिए ऐं मोबाइल नंबर ज़रिए बि तव्हां असांखे ॿुधाए सघो था। असांजो मोबाइल नंबर आहे 0332123228।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली। वधीक मालूमात लाए 2347-3141-200।
4: केश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खुश खबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301043842
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
0: सुनते रहो GFM 90.4
6: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
2: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
6: 03125252786
2: जी हा 2315525786
6: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़

अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाए।
3: सिक्योरिटी के मैदान में पाकिस्तान से मजबूत लागापा चाहूं था। पाकिस्तान से गडियल ताउन वधाने जा ख्वाहिशमंद आयूं। ईरान के सदर मसूद पज़िशान की पाकिस्तान के घरू वजीर मोहसिन नकवी से मुलाकात बाद मीडिया से गालियूं। ईरानी मीडिया मौजूद पाकिस्तान के घरू वजीर मोहसिन नकवी तेहरान में ईरान के सदर मसूद पज़िशान से मुलाकात कई। ईरानी सदर जो चवण हो तो पाकिस्तान से मजबूत लागापा इलाकई सिक्योरिटी में इजाफे जो सबब बणजी सघन था। बतरफन लागापन से गडियल मुफाद के तकवीयत मिलंदी। इन खां अग मोहसिन नकवी ईरान के परदेह वजीर अब्बास इराकची से मुलाकात कई। खिते के ताजी सूरतहाल ते गालियूं कयूं। अमेरिकी सदर के ईरान के हमले के खौफ खां कंटेनर में मुंतकिल बेई जहाज में मुंतकिल कयो वयो। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट दावा कई है तो गुजरियल महीने तुर्की में नेटो इजलास बाद कातलाने हमले के खौफ खां मुख्तसिर सिक्योरिटी ऑपरेशन कयो वयो। अमेरिका के इसराइल तरफा इतलाह मिलो हो तो ईरान कुल्हे ते रखी फायर करण वाले मिजाइल से ट्रंप के जहाज के निशानो बनाए सके तो। पंजाब में पीपी कश्मोर के जिले नायब सदर समेत टे जणा कतल। पीपी कश्मोर जो नायब सदर आलमगीर कोश संदस अजीज माशू कोश ए नाजिम कोश पंजाब के इलाके दीनू शाह में हथियारबंदन हथा कतल। लाश सादकाबाद अस्पताल मुंतकिल कयो वयो। वारसन जो चवण है आलमगीर कोश ए संदस साथी पंजाब के अहमदपुर थाने की हद बोहेवाड़ में यासीन के घर में तरसियल हुआ तो हथियारबंदन हमलों कर खेन कतल कयो आहे। सिंध हाई कोर्ट में टिन एडिशनल जजन हल्फ खणी वरतो। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस जफर अहमद राजपूत एडिशनल जजन का हल्फ वरतो। जस्टिस मोहम्मद हुमायूं खान जस्टिस सुरेश कुमार ए जस्टिस शाहनवाज मेमण हल्फ खयो। हल्फ बरदारी की तकरीब में हाई कोर्ट जा जज बार जा नुमाइंदा ए सीनियर वकील शरीक थिया। पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में हिकु ॾींहुं लाइ फेरफार। पेट्रोल 1.70 रुपया सस्तो ऐं डीज़ल 1.39 रुपया फी लीटर महांगो थी वियो। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल जी नई क़ीमत 325.92 रुपया फी लीटर मुक़ररु। डीज़ल जी नई क़ीमत 382.25 रुपया फी लीटर थी वई। पेट्रोलियम शयुनि जा नवां अघ सिर्फ़ हिकु ॾींहुं लाइ मुक़ररु कया विया। पाकिस्तान जे नौजवाननि जो अज़म तवानाई ऐं तकलीकी सलाहियतूं क़ीमती असासो आहिनि। नौजवाननि खे बाख़्तियार बणाइण वक़्त जी अहम ज़रूरत आहे। सदर आसिफ ज़रदारी जो नौजवाननि जे आलमी लिहाड़े ते पैगाम। संदसि चवण आहे त मयारी तालीम बाइज़त रोज़गार ऐं जिदत नौजवाननि जूं गॾियल ख़्वाहिशूं आहिनि। पाकिस्तान जी तक़रीबन 67% आबादी 30 वर्षनि खां घटि उमिरि जे नौजवाननि ते ॿधल आहे। नौजवान पाकिस्तान जो सभ खां वॾो इंसानी सरमायो आहिनि।

0: सखर जी अदालत कत्ल केस जो डो साबित थियण बदिरां जवाबदार के उमर कैद जी सजा बुधाए छी। फर्स्ट एडिशनल सेशन कोर्ट जे जज जवाबदार अली बख शेख के उमर कैद 30 लख रुपया दंड जी सजा बुधाए छी। मुआवजो अदा न करण जी सूरत में जवाबदार के वधीक 6 महीना कैद भोगणी पवंदी। 2020 में साले पटताणे जी हद में जवाबदारन गोठाणे के कत्ल कयो हो। जश्न आज़ादी में 2 ॾींहं रहिजी विया। सिंध समेत समूरे मुल्क में जश्न मल्हाइण जूं तयारियूं जारी। सूबे जे नंढनि वॾनि शहरनि में क़ौमी झंडनि जी बहार, ख़ासि स्टॉल बि लॻाया विया।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: GAFM 88
2: नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

0: इन मिट्टी जा रंग रौनकू जरखेजी असाजे हारिय साई ताहिन आबाद हाने इन जो अन्याब वधी का मान वधायन लाए तमासा गड़ाए सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कर आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणु छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तियाबी करे फसल के अन्याब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
2: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
2: औलाद जो न थियन औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियन कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-3241-230
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻण लाइ खु़शि ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
6: खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
9: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
4: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
10: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
10: 0331252578 6।
4: जी हा, 2315525786।
10: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। यू आर शंगन जटी रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, शीर सी हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं RJ रुखसार, सिंध की आवाज। हर यू कैसे हैं आप? आई होप जी जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल टिप टॉप सेट कूल एक सांग एकदम स्ट्रांग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार हैं, पूरी पूरी। एक बजे तक आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 to 1 PM। आपको मेरा साथ रहता है और ये खूबसूरती बड़ा खूबसूरत सा साथ जो कि आज भी जारी और सारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक। प्रोग्राम में अगर हम वक्त की बात करते हैं, सबसे पहले तो वक्त हुआ जाता है जी 11:22 जो कि पाकिस्तान का मियारी वक्त है। तमाम तर लोगों की घड़ियों में बज रहा है और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में है, ट्रक में है, रिक्शा में है, कार में है, बाइक पे है, जो भी जहाँ भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ जर्नी, बट एट द नेवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। वफ़ज़ली खुदा खैरियत दे मौजूद और तवक्कुल खुदा खैरियत दे।

50 साल के हैं उनको कहेंगे मैंने मनी हैप्पी रिटर्न सैटरडे हैव अ बेटर टू यू. इसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. और वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए. आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें आमीन. इसके अलावा मेरी आवाज जिन जिन गलियों और शोबारों शहरों और शराहों वादियों और पहाड़ों दरियाओं और मरगुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे परस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है. तमाम सुनने वालों को चाहने वालों को मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बेगम अहलन वसहलन मरहबा बखैर आगे लेजी आयानु सदरसुल्लाह बोंजोर शाओ निहाओ एंड वेलकम इन टू जिंदगी गुलजार है. प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ होगा सुनने को सुनाने को समझने को समझाने को सीखने को सिखाने को बोलने को बुलवाने को और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें आपसे करूंगी. लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना. स्टे ट्यून्ड.

के प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरीके कार्ड से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए.

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: हिन मिटीअ जा रंग रौनकूं ऐं ज़रख़ेज़ी असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी, करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। White H Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White H Beauty Cream, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10।

0: बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो नथी आण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
0: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
3: खुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाव पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
5: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
6: 90.4। पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
7: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03125252786।
7: जी हा 2315525786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़।

0: बाकी जी वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, आपका और मेरा साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है जी. और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में कमेंट्स कॉल्स के थ्रू, तो जरूर कीजिएगा और मुझसे बात कीजिएगा क्योंकि हम अपना सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं जी. दैट इज सर लगाओ गाना सुनाओ. और सर लगाओ गाना सुनाओ में जो गाना आप मुझे सुनाएंगे वो गाना उसी टाइम पे राइट अवे प्ले कर दिया जाएगा. तो फर्स्ट कॉलर ऑफ द शो चेक करेंगे. कॉलर कहाँ से जी? हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम बाजी.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: अभी मैं हाफिज मोहम्मद अली बिरंद बात कर रहा हूँ, जगमाबाद सिंध से.
0: जगमाबाद से बात कर रहे हैं, कैसे भाई, ठीक ठाक? प्रोग्राम सुनते हैं?
1: प्रोग्राम तो मैं सुनता हूँ, कभी कभी आता है कभी नहीं आता है. हमारे स्टेशन में थोड़ा मसला है, वो भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा.
0: ठीक है, गाना सुनाएंगे?
1: गाना सुनाने के काबिल में नहीं हूँ क्योंकि मेरी आवाज सही नहीं है, मुझे थोड़ा गाड़ी फस्ट हो गया.
0: चलें जबरदस्त, फिर मैं जो सुनाऊंगी वो सुन लें, ठीक है?
1: सुनाए
0: ओके, मैं सुनाती हूँ जी. अल्लाह हाफिज. एंड गाना हम प्ले करने जा रहे हैं एक ब्यूटिफुल, तो सुनेंगे इंजॉय करेंगे. जब हम इंजॉय करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा.

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकू ऐं ज़रख़ेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिं जो मोतीअ जहिड़ो दाणो छकाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाब, करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क।

0: इन मिट्टी जा रंग रौनकू जरखेजी असा जे हारी साई ताहन आबाद हाने इन जो अन्याब वधी का मान वधाएन लाए तमासा गदाए सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दानो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाब करे फसल के अन्याब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
1: अवांजे पंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुनातल निजामानी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे सामू सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अजा मुस्तफा सीएमएच हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियन जो इलाज ऐं बार जो न थियण बांझपन
2: डॉक्टर अजा मुस्तफा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोजानो मरीजन जो इलाज कंदी याद रख निजामानी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलिल रहंदो निजामानी मेडिकल सेंटर ते ओटी लेबोरेटरी आई फार्मेसी जी सहूलत मौजूद आहे निजामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वने थी वधिक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
5: सुनते रहो GFM 90.4

0: जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आर जी रुखसाए, आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है जी. और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं कॉल्स के थ्रू, तो कॉल कीजिए 03000113488 के ऊपर. कॉल लेने जा रहे हैं शो की नेक्स्ट. हेलो
1: हेलो,
0: अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? कैसे भाई, ठीक ठाक? और मुझे बताइएगा कि प्रोग्राम सुन रहे हैं, गाना वाना सुनाएंगे?
1: प्रोग्राम गाना भी सुनाएंगे.
0: तो सुना दे
1: अभी गानो आजादी के हिसाब सा है. जो असांगे बुझायो.
0: ओके, कौन सा?
1: कदम कदम कदम कदम.
0: ओके जी, बिल्कुल जरूर सुनाते हैं जी. थैंक यू सो मच. एंड ये रहा आपका गाना और इसको हम सुनेंगे और इसी के साथ हम चलेंगे आगे. और मेरे ख्याल से कि हम ओरिजिनल वाला प्ले करते हैं, बिकॉज ओल्ड इज गोल्ड. ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, इसलिए असली वाला प्ले करेंगे.

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी जी ईरानी सदर मसूद पजगशान सां तहरान में ईरानी सदर सां मुलाकात बिन तरफन लागापन खिते जी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं ज़रियन मौजूद मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल जो ख़ास पैगाम ईरानी सदर ताईं पहुचायो ऐं पाकिस्तान सऊदी ऐं तुर्किया विच में थियल मके दिफ़ाई मुआहिदे बाबति बि आगाह कयो। खिते में जारी छिकताण जे ख़ात्मे जे हवाले सां बि तफ़सीली ॻाल्हियूं कयूं वयूं। ॿिन्ही अॻवाननि मौजूदा सूरत हाल में राब्तनि में रहण ते बि इतफ़ाक़ कयो।

0: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go in a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
1: What's the nature of the threat?
0: I guess there was a threat out there. I didn't really ask too much about it. I get a lot of threats.
2: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तुर्किया में थियल नेटो इजलास बाद जहाज तब्दील करे सफर करण जी तस्दीक करे छी। मीडिया से गालाईंदे डोनाल्ड ट्रंप चयो तो मुख्य घणो खतरो आहे। तुर्किया मां वापसी ते बे जहाज में सफर कयो हो। बई जहाज में सफर जो फैसलो सेक्रेट सर्विस ए फौज सीक्रेट सर्विस ए फौज के मशोरे ते कयो हो। ईरान ते भरोसो नाहे, लगातार कूड़ गालाए रहियो आहे। ईरान सां मामला ठीक हली रहिया आहिनि। नाबन हर्मुज ते अमेरिका जो मुकमल कंट्रोल आहे। पाकिस्तान समेत समूरी दुनिया में नौजवानों जो आलमी अज डी मल्हायो पियो वञे। सिंध जो नौजवान जदीद दौर में इल्म ए हुनर का महरूम। हुनरी सिख्या लाए जोगा इंतजाम न होने सबब नौजवान परेशानियों जो शिकार आहिन। सदर आसिफ अली जरदारी चयो आहे त पाकिस्तान जे नौजवान जो अज़म तवानाई ए तख्लीकी सलाहियतूं कीमती असासो आहिन। नौजवानन के बाइख्तियार बणाइण वक्त जी अहम ज़रूरत आहे। मयारी तालीम, बाइज़त रोज़गार ऐं जिदत नौजवाननि जूं गडि॒यल ख़्वाहिशूं आहिनि। सिंध हाई कोर्ट में टिन एडिशनल जजिस हलफ खणी वरितो। सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस जस्टिस जफर अहमद राजपूत एडिशनल जजिस खे हलफ खणायो। जस्टिस मोहम्मद हुमायूं, जस्टिस सुरेश कुमार ऐं जस्टिस शाहनवाज मेमण हलफ खयो। हलफ बरदारी जी तकरीब में जजिस ऐं सीनियर वकील शरीक थिया। पंजाब में पीपल्स पार्टी कश्मीर के जिले नायब सदर समेत टे जणा कतल। पीपी कश्मीर जो नायब सदर आलमगीर कोश, संदस अजीज माशू कोश ए नाजिम कोश पंजाब के इलाके दीनू शाह में हथियारबंदन कतल कयो। वारसन जो चवण है आलमगीर कोश ए संदस साथी पंजाब के अहमदपुर थाने की हद बोहो वार्ड में यासीन के घर में तरसियल हुआ। हथियारबंदन हमलो करे खेन कतल कयो। टिन्ही जणन के कतल कंदड़ जवाबदारन के गिरफ्तार कयो वञे। जश्न आज़ादी में ब डींह रहिजी विया। सिंध समेत समूरे मुल्क में जश्न मल्हाइण जूं तयारियूं जारी। सूबे जे नंढनि वॾनि शहरनि में क़ौमी झंडनि जी बहार, ख़ासि स्टॉल बि लॻाया विया। ॿारनि, ॿुढनि ऐं औरतनि आज़ादी जे मुनासिबत सां ख़ासि लिबास बि वठी छॾिया। आज़ादी जो ॾिण क़ौमी जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाइण वारे अज़म जो वर्जाउ।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद रखनि निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
9: खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
10: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
9: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
10: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
9: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
10: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
9: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
10: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.4।
5: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
7: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जी एफ एम मातली बदीन।
10: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
10: 03125257866।
7: जी हा, 2315257686।
10: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
5: जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कर आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
6: थैंक यू सो मच, आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू। तुम्हें ये बताइए कि आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं टॉपिक के ऊपर रोल ऑफ ट्रीज इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि मौसमियाती तब्दीली यानी कि क्लाइमेट चेंज आखिर है क्या और ये हमारे लिए किस तरीके से जो है अहम क्यों है और इसके क्या मसले मसाइल हैं।
7: जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो हमारे पास दो वर्ड आते हैं, एक क्लाइमेट चेंज आता है और एक ग्लोबल वार्मिंग आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग की। तो ग्लोबल वार्मिंग वो है कि जो औसतन हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है हर साल और उसकी वजह से जो हमारे ऊपर जो मसाइल हम मतलब देख रहे हैं उसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। अब क्लाइमेट चेंज में ये है कि जो है उसी वजह से हमारी जो रेनफॉल है उसका इजाफा होना, ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, मौसमियाती तब्दीली जिसे हम कहते हैं जो एक टाइम पे एक ड्यूरेशन पे होना चाहिए, जैसे अब बारिशों का सीजन है लेकिन बारिशों के टाइम पे बारिश नहीं आ रही, लेकिन जब हमें बारिश की जरूरत नहीं है और उस टाइम बारिश आ जाए तो सबको हम क्लाइमेट चेंज कहेंगे। अब उसमें सिर्फ ये बारिशों का नहीं है, उससे वो बाकी भी चीजें हैं, हमारा जो है टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाना, उस वजह से हमारे अर्थ को जितने भी चेंजेस का सामना हो रहा है उससे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं।
6: ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि दरख्त मौसमियाती तब्दीली से निपटने में किस तरीके से हमारी मदद करते हैं तो आप हमें क्या बताएंगे?
7: जी, मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए दरख्तों का ये है कि वो हमारा जो टेम्परेचर है उसे सबसे पहले तो कम करता है, ठीक है, और उसके अलावा जो है ना हर चीज को वो मेंटेन रखता है। अब जैसे फ्लड्स हैं, फ्लड्स अगर आते हैं तो अगर दरख्त लगे होंगे तो उसके फ्लो को कम कर देते हैं, हर चीज को एक मेंटेन रखते हैं। तो इसलिए जो है ना दरख्त सबसे बड़ी एक चीज है, एक अहम चीज है जो हमने जो है क्लाइमेट चेंज से अगर बचना है, अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है तो सबसे ज्यादा जो एक इम्पोर्टेंट चीज है वो दरख्तों को ज्यादा लगाना है और डिफोरेस्टेशन को रोकना है। उसके अलावा बाकी भी चीजें हैं।
6: जी, कंटिन्यू कीजिएगा।
7: बाकी भी चीजें हैं जैसे कि इंडस्ट्रीज हमारी बढ़ रही है, ऑटोमोबाइल्स बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो सारे इफेक्ट्स भी हैं। जारी बात है ये चीजें तो दिन ब दिन जो है हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है तो उन सब से जो हमने निपटना है उसके लिए हमें यही चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो है ना हम दरख्त लगाएं।
6: ओके, तो क्या ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाना ही काफी है क्लाइमेट चेंज के लिए?
7: जी बिल्कुल, एक तो ज्यादा से ज्यादा दरख्त भी लगाना चाहिए, उसके अलावा हमें बाकी भी चीजों पे हमें जो है फोकस करना चाहिए। जैसे एक बहुत बड़ा अब चेंज एक आया है कि जो है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस तरह की जो है ना हमें उन चीजों पे भी हमें फोकस करना चाहिए और बाकी भी हम कोशिश करें कि जो चीज हमारे क्लाइमेट को खराब करती है, ग्लोबल वार्मिंग का जरिया बन रही है, उन चीजों को हम अवॉइड करें या उनके मुतबादिल हम चीजें जो है ना उन पे हम फोकस करें। और डेफिनेटली जो है दरख्त तो वो वाकई इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा बाकी चीजों पे भी हमें जो है ना हमें कंट्रोल करना चाहिए।
6: ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो इस वक्त मौजूदा जंगलात हैं या जो मौजूदा दरख्त हैं उनको बचाने में या फिर अब नए दरख्त लगाने में दोनों में से किस चीज को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए?
7: अगर हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में जंगलात की वैसे ही कमी है, ठीक है, क्योंकि 25% जंगलात होने चाहिए हर मुल्क में, हमारे पास नहीं। हमारा जो एक एवरेज रहता है 2.5 से 5 पॉइंट समथिंग तक इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, तो इसलिए जंगलात की उनकी भी हमें हिफाजत करनी चाहिए। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उसमें यही है कि हमें जो है ना ज्यादा से ज्यादा नए दरख्त लगाने चाहिए और सिर्फ पौधा लगाना ही मकसद नहीं होता, पौधे की हिफाजत करना, उसे परवान चढ़ाना भी जो है वो भी बहुत जरूरी होता है।
6: अच्छा, अगर देखा जाए पाकिस्तान की बात की जाए तो आप हमें ये बताइए कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं वो हमें इस वक्त किन शक्लों में नजर आ रहे हैं?
7: मैं सबसे पहले तो हीट वेव है। अब पहले ये जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये हम सिर्फ जो है किताबों के हद तक पढ़ते थे, लेकिन हम लोग जो है ना खुद से हमने देखा नहीं था ये सारी चीजें ना, तो अक्सर चीजें हमें वो भी लगती थी कि पता नहीं कितना बाद में जाके ये चीजें हम जो है ना फेस करेंगे, लेकिन अब हम हर चीज के सामने हम देख भी रहे हैं। हीट वेव की वजह से जो है यूरोप में इस साल जो है तकरीबन 10,000 लोग उनकी मौत हुई है, कुछ रिपोर्ट्स में वो 15,000 से 20,000 तक भी आ रही है। तो ऐसे पाकिस्तान में भी क्लाइमेट चेंज की वजह से एक तो हीट वेव है, बड़ी हीट वेव की वजह से बहुत सारे लोग जो है हर साल फौत हो रहे हैं, उसके अलावा जो है ना बाकी उसकी वजह से पोल्यूशन भी हो रही है, मुख्तलिफ बीमारियों का हमें सामना भी हो रहा है, और फ्लड्स की सूरत में अगर हम देखें तो फ्लड्स जो है ना वो भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और उसके अलावा जो है लैंडस्लाइडिंग की तरफ अगर हम जाए, लैंडस्लाइडिंग भी जो है वो भी डिफोरेस्टेशन की वजह से हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो एक ज़रई मुल्क है, और ज़रई मुल्क जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा मुतासर होता है, और हमारे पास वैसे भी माली तौर पर भी हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं है। अगर तो बाकी भी तरीके हैं जिससे हम जो है एग्रीकल्चर को हम फेस कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतने बजट नहीं है, तो इसलिए हमें यही चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं और हम क्लाइमेट को कंट्रोल करें।
6: बिल्कुल जी, और अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में दरख्त दर्जा हरारत को कम करने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं?
7: ममालिक हैं वहाँ पर तो अफेक्ट्स होते हैं लेकिन कम होते हैं, जिस तरह का हमारा, क्योंकि मोस्टली हमारे जो इलाके हैं वो गर्म इलाके हैं, तो उधर 2 से 3 डिग्री भी जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर जो लैंड है वो हमारी बहुत ज्यादा मुतासर हो रही है उसकी वजह से, और उसके अलावा जो है एग्रीकल्चर के अलावा हमारे पास वसाइल की भी कमी है। अब हर बंदा जो है एयर कंडीशनर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, या मोस्टली लोगों के पास बाइक्स हैं तो वो ट्रेवल नहीं कर सकते, तो इसीलिए जो है वो दरख्त हमारे मुल्क को डिफोरेस्टेशन या दरख्तों की कमी वो हमारे मुल्क को बहुत ज्यादा मुतासर कर रही है।
6: अच्छा, दरख्तों की कमी की अगर बात की जाए तो दरख्तों की कमी डीफॉरेस्टेशन से होती है, तो आप हमें बताइए कि डीफॉरेस्टेशन जंगलात की कटाई कैसे बढ़ती है और क्यों बढ़ती है?
7: ये अगर हम बात पाकिस्तान की करें तो हमारे मुल्क में जो है डिफोरेस्टेशन के हवाले से कोई खास भी कानून नहीं है पड़े, जो टिम्बर माफिया है उनके हाथ जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उन्हें सियासी पुष्पनाई होती है, उन्हें जो है ना मतलब कि उनकी केयर करने वाले लोग ज्यादा हैं, लेकिन जो जंगल बचाने वाले लोग हैं, जो जंगलात वाले हैं, उनके बैक पे कोई भी नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें एक कानून चेंज करने चाहिए अपने डिफोरेस्टेशन के हवाले से, जो है ना हमें सख्त से सख्त हमें कानून बनाने चाहिए, लेकिन अब काफी चेंजिंग आई है केपीके में और खासतौर पर पंजाब में बहुत ज्यादा इस तरह की चेंजेस आई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो है वो फोर्स डिक्लेयर कर दिया गया है, अच्छी व्हीकल्स ली गई है, पहले सहूलियात भी नहीं थी।
6: ओके, अच्छा, अगर देखा जाए शहरी इलाकों की बात की जाए तो खास तौर पे जो पाकिस्तान के शहर हैं वहां पे दरख्तों की कमी है, खास तौर पे कराची जैसे शहर में, तो आप हमें बताइए कि शहरी इलाकों में दरख्त लगाना क्यों जरूरी है?
7: शहरी इलाकों में क्योंकि देख लें कि ऑक्सीजन लेने वाले लोग भी ज्यादा हैं, शहरी इलाकों में गाड़ियां भी ज्यादा होंगी, वहां पर इंडस्ट्री भी ज्यादा होगी, खासतौर पर हम कराची की बात करें तो वहां पर तो इंडस्ट्री पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, क्योंकि अगर गाड़ियों की बात करें तो वो भी सबसे ज्यादा है, लोग भी सबसे ज्यादा है, तो अब हम ये चीजें तो कम नहीं कर सकते। अब हम किसी को कहेंगे कि अपनी जो है आप एक इंडस्ट्री आप शिफ्ट करें किसी और इलाके में तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना ही अब हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं कि गाड़ियां हम उनकी कम कर दें। हाँ, ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ टीवी वाली तरफ हम शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन इस सब में भी वही बात है कि हमारे पास हम लोग माली तौर पर हम लोग उतना स्ट्रांग नहीं है। उसके लिए यही है कि ज्यादा दरख्त लगाएंगे वो हमारा जो क्लाइमेट है वो एक सही अपनी जगह पर आएगा, जैसा एक क्लाइमेट चाहिए उस शहर में उस हिसाब से हमें ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए।
6: बिल्कुल, अच्छा, दरख्तों की अगर इकसाम की बात की जाए तो क्या हर जगह पे एक जैसा दरख्त लगाना सही है, या वो कौन से दरख्त हैं जो कि लगाने चाहिए क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए?
7: एक ही तरह के दरख्त भी नहीं लगाने चाहिए, मिक्स करके लगाने चाहिए। एक मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि हम सुबह दोपहर शाम हम आलू खाना शुरू कर दें या एक कोई भी डिश हम खाना शुरू कर दें, तो वो कुछ टाइम के लिए तो हमारी बॉडी के लिए सही होगा, लेकिन उसके बाद जो है वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे ही अगर आप एक किस्म का अगर आप लगाना शुरू कर देंगे तो वो भी हमारे एनवायरमेंट को फिर खराब करना शुरू कर देगा। अल्लाह ताला ने हर दरख्त का हर पौधे का कोई ना कोई फायदा रखा है, इसलिए हमें मिक्स करके लगाने चाहिए। उसमें फिर ये है कि परिंदे मुख्तलिफ किस्म के जानवर उन दरख्तों से फायदा ले रहे होते हैं, और ये सब चीजें जो है अल्लाह ताला ने इंसान के फायदे के लिए बनाई है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हमें जहां पे भी हम प्लांटेशन करें हमें मिक्स करके करनी चाहिए, ना कि एक ही पौधे को हम जो है लगाते रहें।
6: अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो हर साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुहिम चल रही होती है प्लांटेशन की, तो प्लांटेशन तो हम कर देते हैं, दरख्त का बीज तो हम लगा देते हैं, लेकिन फिर उसकी देखभाल जो है ना हम नहीं करते। तो आप हमें ये बताइए कि दरख्त लगाने के बाद इनकी देखभाल और बका को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है?
7: दरख्त लगाना तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, असल है उसे परवान चढ़ाना। उसके लिए सबसे पहले तो हमें उसकी सेफ्टी हमने देखनी है कि कोई बाउंड्री वॉल है या हमने कोई उसका सेफ गार्ड हमने लगाया हुआ है, सबसे पहली चीज वो है। दूसरे नंबर पे वाटरिंग है, पानी का आप निजाम देखें, या तो नेचुरली उसे पानी मिल रहा हो, लेकिन हमारा इलाके इस तरह के यहाँ पर औसतन बारिशें भी कम हो रही होती है, तो इसलिए हमें जो है ना पानी का भी खास ख्याल रखना है। और तीसरे नंबर पे जो वहां पर लोकल कम्युनिटी है, उसके जो करीबी है, उसे भी हमने अवेयरनेस देनी है कि ये हमने पौधा लगाया है, ये क्यों जरूरी है। सबसे पहले जहां पर भी आप पौधा लगाएं वहां पर आप लोगों का आप इंटरेस्ट देखें, उनमें आप इंटरेस्ट डेवलप करें कि अगर आप वहां पर उनकी केयर नहीं भी कर सकते तो उसके इर्द गिर्द वाले लोग उसकी केयर करें, उसे पानी भी दें, उसकी हिफाजत भी करें, जानवरों से भी उसे बचाएं और कल को उसे काटें भी रहें।

0: ഹാൽ നോത്കാണി ചോക്ക് മാത്ലി തേ ഓരത്തിന്റെ ബിമാരിന്റെ മാഹിർ ഡോക്ടറാണി ഡോക്ടർ അതീക സയ്യിദ്.
1: റോസാനു സുബുജോ ഡേഹ ഖാ രാത് ജോ ഡേ ബജേ തായി മരീസൻ ജോ ഇലാജ് കണ്ടി
0: ഔലാദ ജോ നതിയാണ് औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे.
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली. वधीक मालूमात लाइ 2347321230. कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़श ख़बरी. छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो. सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो. मोबाइल नंबर 03002962435. एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली.
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली. डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी. औलाद जो न थियण औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन.
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी. यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो. निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे. निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी. वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी. मोबाइल नंबर 2310314348042.
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4.
4: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल.
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन.
4: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा.
4: 03132525786.
1: जी हा, 2315525786.
4: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़.

की तरफ मूव करेंगे और चेक भी करेंगे कि कहाँ कहाँ और कितने लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मुझे ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं आप लोगों के. सो जी, मैसेजेस की तरफ चलते हैं और मैसेजेस के साथ साथ हम एक गाना भी प्ले करते हैं, और गाना जो हम प्ले करेंगे वो होगा बहुत ज्यादा ब्यूटिफुल.

0: नंबर। ओके जी, कॉलर लाइन पे मौजूद है। हेलो
1: जी, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: मोहम्मद बच्चन कलकत्ता।
0: मोहम्मद बच्चन शमानी, कैसे? ठीक ठाक
1: अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह,
0: प्रोग्राम सुन रहे?
1: जी जी, प्रोग्राम पे हाने रेडियो
0: वाला। ओके, मुझे बताएं कि आज की अच्छी बात क्या है?
1: अच्छी बात तो नमाज पढ़नी चाहिए। कैसा चला कोशिश करे। जी जी, नमाज मुसलमान हो, पंज वक्त पढ़े तो तमाम बेहतर।
0: ओके, और कुछ कहना है?
1: मुझे बलोची में एक गाना सुनाओ तो चमन मीराली का।
0: चले मैं ट्राई करती हूँ जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।
2: लेट्स डू दिस। Sing with me, everybody, if you know the song.

इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत और इंशाल्लाह मेरी आपसे चिटचैट होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद द सेम आरजे. सुनना मत भूलिएगा, जिंदगी गुलजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. सो दिस इज मी आरजे रुखसार, साइन आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज.

0: जी ईरानी सदर मसूद पजिशान से तेहरान में ईरानी सदर से मुलाकात बिन तरफन लागापन खिते की सूरत हाल से जरिए मौजूद मोहसिन नकवी वजीर आजम फील्ड मार्शल जो खास पैगाम ईरानी सदर ताई पहुंचाया ए पाकिस्तान सऊदी ए तुर्किया विच में थियल मक्का दिफाई मुहिदे बाबत भी आगाह कयो खिते में जारी छिकताण के खात्मे के हवाले से भी तफसीली गालियों कई वयू बिन्हीं अगवाण मौजूदा सूरत हाल में राबतन में रहने ते भी इतफाक कयो नायब वजीर आजम इसहाक डार पारा रेड सी में व्यापारी जहाज से हुसिन के हमले की मजम्मत बहरी जहाज से हमले में टिन पाकिस्तानी जी शहीद एक जी जख्मी थियण की तस्दीक कर छी इसहाक डार अड़ा हमला बेगुनाह इंसान बहरी सलामती लाए संगीन खतरो है पाकिस्तान सऊदी यमनी हुकूमत से राबते में आयु रियाज में सफारतखाने के मड़न की डेह वापसी ए जख्मी के बेहतरीन इलाज लाए हिदायतू जारी क्यों आन
1: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go in a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
2: What was the nature of the threat?
1: I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats.
0: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तुर्किया में थियल नेटो इजलास बाद जहाज तब्दील कर सफर करण की तस्दीक कर छी मीडिया से गालंदे डोनाल्ड ट्रंप तो मुख्य घणो खतरो है तुर्किया में वापसी से बे जहाज में सफर कयो हो बे जहाज में सफर जो फैसलो सीक्रेट सर्विस ए फौज के मशोरे से कयो हो ईरान से भरोसो न लगातार कूड़ गाले रो है ईरान से मामला ठीक हली रहा है नाबन हरमुज से अमेरिका जो मुकम्मल कंट्रोल है अमेरिकी फौज असाजे उम्मीदन खां भी वधिक कमजोर निकती अमेरिका सां जंग में वधिक तजुर्बो हासिल कयो आहे जेको मुस्तकबिल जे जंगी हिकमत अमली लाइ अहम साबित थी सघे थो पासदारन इनकलाब जे कमांडर जे सलाहकार मोहम्मद रज़ा जे चयो आहे त अमेरिका सां जंग जेतिरी डिघी थींदी तजुर्बो वधिक हासिल थींदो थी।

ईरान जो इराक में गुर्दन के थाकन ते वो हमलो मिजाइल से ड्रोन फायर केतरियों ही इमारतों पट थी वयूं पर ॾेही मीडिया मूजिब ईरान अरबेल के चौधारी किरदारन के पोजिशन के निशानो बनायो। ईरानी हमले बाद अरबेल सूबे में सिक्योरिटी सूरतहाल वधीक खराब थी वही। पाकिस्तान समेत समूरी दुनिया में नौजवानों जो अज आलमी ढी मल्हायो पियो वञे। सिंध जो नौजवान जदीद दौर में बे इल्म हुनर का महरूम। हुनरी सिख्या लाए जोगा इंतजाम न होने सबब नौजवान परेशानियों जो शिकार है। सदर आसिफ अली जरदारी चयो है तो पाकिस्तान के नौजवानों जो अज़म तवानाई ए तकलीफी सलाहतू कीमती असासो आहिन। नौजवानों के बाख्तियार बनाने वक्त की अहम जरूरत है। मयारी तालीम बाइज्जत रोजगार ए जिद्दत नौजवानों जो गडियल ख्वाहिशू आहिन। सिंध हाई कोर्ट में टिन एडिशनल जजिस हलफ खणी वरतो। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस जफर अहमद राजपूत एडिशनल जजिस के हलफ खणायो। जस्टिस मोहम्मद हुमायूं खान जस्टिस सुरेश कुमार ए जस्टिस शाहनवाज मेमण हलफ खयो। हलफ बरदारी की तकरीब में जजिस ए सीनियर वकील शरीक थिया।

तलहार में सुल्तानी कैनाल मां निकरंदड़ महनाई की शाख में पाणीअ कोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो धरणो कुछड़ी जे आबादगारनि तलहार राजू खानाणी रोड ते मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। आबादगारनि जो चवण आहे त महनाई की शाख ते हज़ारे एकड़ ज़मीन आबाद थींदी आहे। पाणी खोट सबबि फसल सड़ी रहिया आहिनि। पाणी ॾिनो वञे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
4: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
5: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
6: अवां जे पंहिंजे शहर माथली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
9: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
10: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
7: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM
11: 90.4।
6: कारोबार की तरक्की लाए सोचे रहा आयो
9: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
9: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
11: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
11: 03125252786
9: जी हाँ 2315525786
11: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
9: सिंध जो आवाज़।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कर आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तियाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
5: सुनते रहो GFM 90.4।

तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। संजय दंडल का तमाम खूबसूरत मासूम वही सुने समातन से मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। दुआ के समान दो सातों की बारिश और खजानों के साथ दुआ ही पैसे पलता रास्ते कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नीचे तक जमीन से आसमान तक जिंदगी से मौत तक सांस से दर्द से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो प्रकाश मटियारी सकरन मेहरापुर मंथली और जनाब मेहरापुर और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल सुना प्रोग्राम आप लोगों का अपना है व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करने वाले प्रोडक्ट्स है। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो बहुत से लोग इस वजह से भी परेशान होते हैं कि भाई हमें तो कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं कर पाता, हम तो अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगा भी लेते हैं तो हमारी स्किन मजीद खराब हो जाती है। इस तरह का अगर कोई भी वाला सीन आपके साथ भी बन रहा है तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। बस आपको बताया जाएगा इस प्रोग्राम में कि आप किस तरह अपनी खूबसूरती का ख्याल रख सकते हैं और किस तरह आप अपने खूबसूरत से चेहरे को मजीद ब्यूटीफुल पुरकशिश और हसीन बना सकते हैं। ओके जी, इसी के साथ साथ यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बत और समाज और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया और साथ ही साथ जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं। So listeners, for presenting the most beautiful, fantastic, interesting and entertaining character, your RJ and your DJ, Sidram Askar, naam to sunai hoga. So bilkul aapke Sidram ke saath maujood hai janab, is beautiful se program mein aap logo ko beautiful banane ke liye ready ho jaiye, beautiful banne ke liye. Aise ke saath saath yahan par bahut sare log hamare saath maujood hai, so chaliye ji, jaldi jaldi se apne haal chaal batate jaiye. So dear listeners, and the kaisi halat hai, kaisi hai aapki halat hai? Ummeed hai shadidan ke bilkul theek thaak honge, sab kul mood ke saath sab kul program ka intezar kare honge. To aapke jo intezar ki ghadiyan thi wo khatam ho chuki hai, finally yahan par हमने एंट्रियां मारी ली हैं। आपको बताना, जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक। तो पूरे 3 बजे तक मैं आपके साथ मौजूद रहने वाली हूँ बहुत ज्यादा बातों के साथ, बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक कलेक्शन के साथ और बहुत ज्यादा ब्यूटी टिप्स के साथ साथ। ओके जी, तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कि आप इस्तेमाल करेंगे अपनी खूबसूरती का ख्याल रखने के लिए, उसी के साथ साथ चाहे आप मर्द हजरात हैं खवातीन हैं, भाई जान रेडी हो जाइए अपनी खूबसूरती को जरा एनहेंस करने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे, ऐसे बहुत सारी अंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पवा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सभी अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होंठों पर 440 उल्के समाल लाने का काम करती हुई ये सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्के समाल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जी आज प्रोग्राम में एक बहुत ही खूबसूरत से मिली नगमे के साथ। भाई मिली नगमा हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि 14 अगस्त बहुत करीब आ चुका है और देखा जाए तो 14 अगस्त हो भी फ्राइडे वाले दिन रहा है, तो फ्राइडे वाले दिन तो मेरा प्रोग्राम नहीं होता है, तो मैंने सोचा चलो भाई आज हम ऐसा करते हैं प्रोग्राम का स्टार्ट लेते हैं तो वो जरा मिली नगमे के साथ लेते हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा मिली नगमा जो कि हमारी लिस्ट में मौजूद है, हम एंजॉय करेंगे उसके बाद जैसे ही वापस आएंगे तो बताएंगे कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

0: मैं भी जिंदा सही सलामत हूँ और कुछ दिनों के बाद आया हूँ शो में शर्मा के उती भैया नन्ना बाबा वीरो वीरो और अखलाक बलूच हमारे साथ मौजूद है, भाई को वेलकम कहते हैं और ईसार दास हमारे साथ हैं, गोट आलम खान जरवार खान ईसर दास बिल अजीज जरवार प्रोग्राम सठो हली रहो आए, थैंक यू सो मच मोहब्बतू आए भावन जो तव्हां खे चौथा भली करे आया दर्दी दिल हमारे साथ ही वालेकुम असलम चंदा जानी आप कैसी हैं क्या हाल है जानी का साथ साथ हम भी आ गए बहुत शुक्रिया स्वीटू हिदायतुल्ला कहते हैं सलाम कैसी हो वालेकुम असलम बहुत अच्छी हो तुम कैसे हो कहते हैं 12 अगस्त मुबारक हो आपको भी जी बहुत मुबारक हो ऐसा अरबानी कहते हैं हमारे बिल्कुल सही कह रहे हैं अली मुर्तजा हमारे साथी वालेकुम असलम गुड आफ्टरनून कहते हैं कैफा हालुक या हबीबी हालुक सफा भलो ताम बताया कि आयो मजे में आयो असार दास कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद फौजिया सुमरों की आवाज में सॉन्ग सुनाए मेहरबानी होगी बिल्कुल बिल्कुल हिदायतुल्ला कहते बाकी 5 अच्छा टॉपिक का जवाब देते हैं सही सही सही सही सही अच्छा ये हमारे साथ निदड़ी भी मौजूद है वालेकुम अस्सलाम स्वीटी वेलकम टू शो टॉपिक अच्छा सही सही टॉपिक का जवाब देते जाइए और अली मुर्तजा कहते कॉमन सेंस के लिए सेंस का होना जरूरी है इसीलिए हाँ बिल्कुल जी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाइए और आज मैंने आप लोगों से जो सवाल पूछा है उसका जवाब देते जाइए मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं कि आपके पास 5 एप्पल्स मौजूद हैं ठीक है आपने 2 उठा लिए बाकी आपके पास कितने बचते हैं इसी के साथ साथ आप हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों को जरा मेंशन करते जाइए और उसके अलावा बताइए उन्हें भी कि मार्केट में व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं तो जल्दी से जाइए परचेज करके आइए और इस्तेमाल करते जाइए ताकि आपको भी मिले ऐसी खूबसूरती जो कि आप हमेशा से हासिल करना चाहते थे इसी के साथ साथ टाइम हुआ जाता है जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाएं उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आएंगे आपने बिल्कुल कहीं नहीं जाना हमारे साथ मौजूद रहिएगा सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए और पूरी पूरी 3 बजे तक मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात
5: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
7: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
6: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
6: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
8: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
9: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ाम उस्ताद

0: फास CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियों जो इलाज बार जो न थियण बांझपन
1: डॉक्टर अजा मुस्तफा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाने रोजानो मरीजन जो इलाज कंदी याद रखंदा निजामानी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलिल रहंदो निजामानी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी फार्मेसी जी सहूलत मौजूद आहे निजामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
2: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
3: अवां जे पंहिंजे शहर माटली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
4: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
5: 90.4।
6: पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
7: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
6: 03125252786।
7: जी हा 2315525786
6: GFM रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

एंटी एजिंग फेस वॉश जिसके डेली वॉश से चेहरे को मिले ट्रॉपिकल ऑरेंज और विटामिन ई की फ्रेशनेस रिच क्रीमी फॉर्मूला फॉर रिवाइविंग ग्लो डलनेस को रिमूव करे और डेड स्किन लेयर्स को रिवाइटलाइज करे ताकि आप पाएं इंस्टेंट ब्राइटनेस और फ्लॉलेस ग्लो के साथ फ्रेशनेस भी वाइट एज विटामिन सी फेस वॉश मेरा फ्रेश ग्लो A product by Biocon International, Pakistan.

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं ZFM88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरन, मेहरापुर, मातली, मेहरापुर और मटियारी, उन खां अलावा लाड़काने वाला बेस सगड़ मौजूद है। जगह जगह सोना सोना मानो असा बुधन पया सभी जो मोहब्बतू आन बाबा प्रोग्राम में तक चौथा भली करे आया आपकी मोहब्बतें समाते और चाहते हैं जनाब। और यहाँ पर प्रोग्राम आप लोगों तक नशर किया जा रहा है YTH ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावल से। तो YTH ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कि आप इस्तेमाल करते हैं और जनाब वो आप इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि आप लोग अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो भी अपनी खूबसूरती का ख्याल नहीं रखते हैं। खूबसूरती का ख्याल रखा करें, ये बहुत एक जरूरी सी एक चीज होती है। अगर आप अपनी खूबसूरती का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। उसके अलावा साथ ही साथ अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमारे एरिया में तो अभी तक ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हुए हैं, मिलते ही नहीं हमारे गोठ में, असांजे शहर में, तो बाबा मिले कौन थो। जॾहिं बि तव्हांखां पुछंदी आहियां, ज्यादातर माण्हू मूंखे इहो ई चवंदा त भाजी असांजे सिटी में अवेलेबल कोन आहे। असां वञी पुछा करे आयासीं त पर असांखे ख़बर पई त हिते त अवेलेबल ई कोन आहिनि, चाहे YTH प्रोडक्ट्स हुजनि या वरी डी स्किन जा प्रोडक्ट्स हुजनि। त तव्हांखे जेको नंबर प्रोग्राम में ॿुधायो वञे थो, नंबर ते तव्हां राबितो करे वठंदा कयो ऐं राबितो करण खां पोइ तव्हांखे जेको आहे न बिल्कुलु ॿुधायो वेंदो त तव्हांजे एरिया में अवेलेबल किथे किथे आहिनि या वरी तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराया वेंदा प्रोडक्ट्स। सो तव्हांखे डायल करणो आहे बाबा 0233-27-38-4309 और दूसरा नंबर है 03-12-50-25-907 03-12-50-25-907। ये नंबर आप जल्दी से डायल कीजिए ताकि आपके लिए आके करीबी जनरल स्टोर्स पर YTH शो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाए। और इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को तमाम तरह प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाए तो यहाँ पर आप अच्छे से जानते हैं कि YTH ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कितने सारे और कितने मजे मजे के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं YTH ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, तो YTH ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपको सबसे पहले तो YTH ब्यूटी क्रीम मिल जाती है। YTH ब्यूटी क्रीम जो कि एक नाइट क्रीम है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं रात के टाइम। उसके अलावा आपको साथ में YTH ब्यूटी सोप मिल रहा है, मुफ्त में नहीं मिलेगा, बस आपने परचेज करना पड़ेगा। बोलने का अंदाज कुछ ऐसा होता है जैसे भी लगे भाई हाँ YTH ब्यूटी क्रीम परचेज करेंगे तो उसके साथ आपको YTH का ब्यूटी सोप मुफ्त में मिलेगा। मुफ्त में आज के दौर में कुछ नहीं मिलता, ये चीज आप याद रखिएगा। तो YTH ब्यूटी क्रीम के साथ आपने YTH ब्यूटी सोप परचेज करना है। अगर आप सोप लगाते हैं तो, अगर आप सोप नहीं लगाते हैं या फेस वॉश लगाते हैं तो आपके लिए YTH का फेस वॉश भी मौजूद है। बिल्कुल जी, आप इस चीज में बिल्कुल भी नहीं घबराएं कि भाई हाणे अच्छा थींदो, असां त साबुण हणंदा आहियूं, असां त फेस वॉश हणंदा आहियूं। तव्हां जेका भी चीज हणंदा आहियूं तव्हांजे लाइ YTH में अवेलेबल आहे। उन खां अलावा वरी तव्हांजे लाइ YTH लवली क्रीम मौजूद आहे। YTH लवली क्रीम त उन्हनि माण्हुनि जे लाइ आहे जेके बाबा पंहिंजे चेहरे ते फेयरनेस हासिल करणु चाहींदा आहिनि ऐं तव्हां रेग्यूलर डेली बेसिस ते कोई फेयरनेस क्रीम अगरि तव्हां सिलेक्ट करणु चाहियो था त तव्हां YTH लवली क्रीम जो इस्तेमाल लाज़मी करे ॾिसो। उन खां पोइ तव्हांजे लाइ डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आहे जेको तव्हांजे एक्नी खे ख़तम करण जे लाइ तयार कयो वियो आहे। उन खां पोइ तव्हांजे लाइ लोशन बि अवेलेबल आहे ऐं तव्हांजे लाइ हेयर रिमूवल लोशन्स बि आहिनि जेके तीन मुख़्तलिफ़ अलॻि फ्लेवर्स जे अंदर अवेलेबल आहे। ही तमामु YTH जा प्रोडक्ट आहिनि जेके तव्हांखे ईज़ीली हर नंढे वॾे जनरल स्टोर तां मिली सघनि था। सो पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर सां मालूमात वठी ॾिसजो, नाहे अगरि अवेलेबल त तव्हांखे जेको नंबर ॿुधायो न नंबर ते तव्हां राबितो करे सघो था। ओके जी, सो YTH ब्यूटी क्रीम जी अगरि ॻाल्हि कई वञे त YTH ब्यूटी क्रीम तव्हां इस्तेमाल कंदा त तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी छो त YTH ब्यूटी क्रीम एक ऐसी क्रीम है जिसको भई नेचुरल अज़ा से तयार किया गया है। सबसे पहली बात तो अगर नेचुरल अज़ा से तयार किए गए प्रोडक्ट्स आप ज्यादा इस्तेमाल करना पसंद करते हैं तो आप YTH ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर एलोवेरा है, मिल्क है, एवोकाडो है, ये तमाम चीजें जो है ना YTH ब्यूटी क्रीम के अंदर एड की गई है। और YTH ब्यूटी क्रीम आपकी जिल्द की खूबसूरती और निखार के लिए एक बेहतरीन ब्यूटी क्रीम तैयार की गई है। आपकी जिल्द को नरम, मुलायम और तरोताजा बनाने में मदद देती है। YTH ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपके चेहरे की खुश्की, दाग धब्बे, बेरोनकी, ये सारी चीजें कम हो जाएगी और जबकि आपकी जिल्द जो है वो ज्यादा साफ और चमकदार महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा YTH ब्यूटी क्रीम में शामिल जनाब जितनी भी खास नेचुरल सी चीजें आपकी जिल्द की हिफाजत करते हैं और कुदरती खूबसूरती को उजागर भी करते हैं और रोजाना इस्तेमाल से आपका चेहरा फ्रेश, खूबसूरत और पुरकशिश नजर आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप भी YTH ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही परफेक्ट क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है जनाब जो कि आप ऑल स्किन टाइप के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्द हजरात, खवातीन, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है।
ओके जो उनखां अलावा साबुण जी त तव्हांखे ख़बर आहे वाइटेज जो साबुण तव्हां इस्तेमालु करे सघो था। वरी अगरि तव्हां वाइटेज जो फेस वॉश वठो पिया त वाइटेज का जो फेस वॉश है ना उसमें थोड़ा सा ये है कि भई आप जैसे जाएंगे मार्केट, कुछ लोग ऐसे होते ना बड़े मासूम से होते जिनको भई तव्हां कुझु बि चई छॾियो त हू हुन जो यकीन करे वेहंदा आहिनि। अगरि तव्हां इहो सोचो था त वाइटेज ब्यूटी क्रीम तव्हां वरिती उन जे कलर जहिड़ो बिल्कुलु सेम टू सेम वाइटेज ब्यूटी सोप आहे, पर वाइटेज जो फेस वॉश वरी उन जहिड़ो छो न आहे? इन ॻाल्हि ते थोरो वज़ाहत कंदासीं। त अगरि तव्हां वाइटेज जो फेस वॉश वठो था त वाइटेज जो फेस वॉश जेको आहे बाबा वाइटमिन सी सां तयार थियल आहे, छो त तव्हां ॾिठो हूंदो न, मतिलब इहा चीज हिकड़ी कॉमन सेंस जी ॻाल्हि आहे त वाइटेज ब्यूटी क्रीम तव्हां इस्तेमालु कयो पिया, वाइटेज ब्यूटी सोप बि तव्हां इस्तेमालु कयो पिया। हाणे वाइटेज जो जेको फेस वॉश आहे उहो सेम त उन जहिड़ो न हूंदो न, छो त उनजी थोरी जेका क्वालिटी हूंदी उनजे अंदरि जेको चीज़ूं हूंदियूं थोरो चेंज कयूं वेंदियूं न। अगरि तव्हांखे उहो साॻियो निखार मिले त तव्हां साबुण इस्तेमालु कंदा त फेस वॉश इस्तेमालु करण जो कहिड़ो ज़रूरु। इन लाइ तव्हांजे लाइ वाइटेज जेको फेस वॉश आहे उनखे नए तरीक़े सां सुठे तरीक़े सां ठाहियो वियो आहे, जंहिंजे अंदरि वाइटमिन सी आहे, वाइटमिन ई आहे, जेकी बाबा तव्हांजी स्किन खे ब्राइट कंदा, एंटी एजिंग जे लाइ बि तमामु ज़बरदस्त आहे। सो वाइटेज जो फेस वॉश तव्हां लाज़मी ट्राए करे सघो था ऐं तव्हांजी हर स्किन जे मुताबिक़ आहे जनाब। सो तव्हांजी सेंसिटिव हुजे, ऑयली हुजे, ड्राई हुजे, कॉम्बिनेशन टाइप हुजे, हर स्किन जे मथां तव्हां इस्तेमालु करे सघो था। सो इस्तेमालु करती रहिए और ख़ूबसूरतियां हासिल करती रहिए। ओके जनाब, सो जल्दी जल्दी से ये तमाम प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको अंदाजा हो सके कि वाकई भाई जान सिदरा जेका ॻाल्हि कई आहे उहा सफ़ा सही ॻाल्हि कई आहे। ऐं हुन खां अलावा तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते बि अवेलेबल करायो ऐं परचेज़ करण में तव्हांखे आसानी थी वेंदी। उन खां अलावा अगरि तव्हां अञा ताईं असांजे प्रोग्राम जो सवाल नाहे ॿुधो त अॼु मां खां सवाल पुछो आहे। फर्ज़ कयो तव्हां वटि पंज जेके न उहे एपल्स आहिनि, ठीकु आहे, उन्हनि मां ॿ तव्हां खयां, बाक़ी तव्हां वटि केतिरा बचा?

ओके जी, कामरान अहमद की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय कर रहे हैं और इसी के साथ साथ रीमिक्स वर्जन में है और साथ साथ आप पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए, आप हमारे साथ माजोती मुझे बताते रहिए। सादिया कहती है यहाँ पे पोइट्री है और लिखती है कि गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने तो मुझे खो दिया मैंने तुझे खोया नहीं, नींद का हल्का सा गुलाबी खुमार आंखों में था, यूं लगा जैसे वो शब को देर तक सोया नहीं। आए हाय। और उसे ये भी बताएं कि वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इंतखाब भी करना है। रशीद खोसो भाई हमें सुन रहे हैं, कहते हैं आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है, मैं सुन रहा हूँ हैदराबाद से, थैंक यू वेरी मच रशीद भाई। स्मार्ट किशोर भाई कहते हैं अद्दा स्मार्ट हाजिर आहे, अज भी यहाँ जवाब दिया, बिल्कुल तव्हांखे जवाब ॾियणो पवंदो, तव्हांखे मोकल थोरी ॾींदासीं। अच्छा अली मुर्तज़ा कहते हैं प्ले, ओके गाना आपने बोला है जो कि बहुत अच्छा गाना है, डेडिकेट दिलावर देरो एंड जलपरी के नाम डायरेक्ट चुड़ैल मावरी जलपरी थी वही जिसने लगे तो तवा के कुटकी मिली आई नहीं ऐसा बाजे तो हम फिर भी बजा सकते हैं, बस बात ये है कि आप लोगों के कान नहीं खाएंगे। सादिया आपका गाना लगाएंगे, बिल्कुल जी, आप मुझे ये बताएं आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हैं। और शौकत बलोच हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप, मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और खुश रहें, थैंक यू जी, थैंक यू। और अखलाक भाई कहते हैं टॉपिक आंसर ओके, निदरी कहती है आंखों आंखों का मसला, गाना चलाऊं या फिर ऐसे ही बोल रही हो क्योंकि कभी कभी तुम्हारी बात मुझे समझ नहीं आती।

आप सुन रहे हैं वाइटिश एंडी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. अगर क्या बात है, आप लोगों की पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए. और यहाँ पर फलक शबीर की बहुत ही सुंदर सी आवाज आप एंजॉय कर रहे हैं. सुंदर बनना चाहते हैं तो वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा. वो जो मैंने सुनाया ना, तो मेरे जहन पे ये सवार हो गया है पड़ेगा. हाँ मेरी जान, उसका ये असर हो गया है मेरे दिमाग के ऊपर. तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर हम सुन लेते ना या देख लेते ना, तो फिर वो हमारे जहनों पर सवार हो जाती. बिल्कुल वैसे ही.

सुनाओ क्या बात है। इसी के साथ साथ यहाँ पर व्हाइट एश लवली क्रीम है। व्हाइट एश लवली क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि व्हाइट एश लवली क्रीम इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, क्योंकि व्हाइट एश लवली क्रीम एक ऐसा फार्मूला है जो कि आप इस्तेमाल करते ना सिर्फ आपको खूबसूरती मिलेगी बल्कि आपके चेहरे की हिफाजत भी होगी। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि व्हाइट एश लवली क्रीम के अंदर जो है ना विटामिन्स का फार्मूला तो भर भर के डाला गया है, लेकिन साथ साथ सनस्क्रीन भी एड की गई है। सनस्क्रीन का काम ये होता है कि आपकी स्किन पर जो है ना ये सूरज के खतरनाक से असरात आ जाते हैं, आपकी स्किन को डैमेज कर देते हैं, आपकी स्किन को मरा हुआ बना देते हैं। तो उसे जिंदा करने के लिए, उसे निखार में जो है ना वो बेहतरीन तरीके से लाने के लिए व्हाइट एज लवली क्रीम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल जो है ना ये सारे लोग ही कर सकते हैं। सारे से मुराद ये कि आप मर्द हजरात हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, हर स्किन टोन के हिसाब से इसे तैयार किया गया है। विटामिन्स का फार्मूला है जरा, भर भर के विटामिन्स डाले गए हैं। हर तरह का विटामिन आपको मिलेगा, जिस भी विटामिन की आपकी स्किन के ऊपर जरूरत होगी तो वो बिल्कुल पूरा हो जाएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर लगाने के क्या तरीके कार होते हैं भाई, आप जब आपको लगे कि बस मैंने बाहर जाना है किसी काम से, आप कोई काम कर रहे हैं या स्कूल आपके बच्चे जाते हैं या फिर आप खुद पढ़ाने जाते हैं, बहुत सारे काम जो अगर आप करते हैं, तो बस आपने चुटकियों में रेडी होने के लिए व्हाइट एज लवली क्रीम का इंतखाब कर लेना है। तो व्हाइट एज लवली क्रीम आप ट्राई करके देखिएगा, आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। उनके अलावा डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब आए, डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब बाबा उन्हें माने जलाया जिनके चेहरे से एक्नी ढाढा अच्छी चुका है। एक्नी अगर तुम्हारे चेहरे से आए तो तुम्हें ट्राई करण घुर्जे डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब, जो मेडिकेटेड फार्मूलो है, आयुर्वेदिक फार्मूलो है, इनके अंदर फुल जड़ी बूटियों एड थियल है। तुम पाजे एक्नी के खत्म करण चाहो था तो डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब जो इस्तेमाल तुम्हें लाजमी करो पड़ो। यह एक गाल बुधाई ना डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब जो है ना बाबा एतरे सुठे तरीके से तैयार किया है, तुम्हारे स्किन जहाँ न सिर्फ एक्नी खत्म थी ना बल्कि एक्नी जहाँ निशान है, कोई सड़न जो निशान आ, कोई धक जो निशान आ, नंढपण में तुम खेडंदा हुआ ना डाढो खेडंदा हुआ, वो तुम्हें को धक लगो हो जो चेहरे से अना तक निशान मौजूद है उनके खत्म करण चाहो था तो डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब तुम बिल्कुल लगा सको था। ढो जबरदस्त क्वालिटी जो ही ट्यूब अव उन अलावा अगर तुम पैंती कें भी नाइट क्रीम में एड करण चाहो था तो वो भी कर सको था। फार्मूलो ठाण चाहो था तो तुम व्हाइट एज लवली क्रीम ए डॉक्टर पिम्पल ट्यूब वो तुम्हें नाइट क्रीम में एड करे सको था, तुम्हारी स्किन जी वह सफा वीआईपी थी वेंदी ए तुम सफा जबरदस्त केमिकल का फ्री फार्मूलो भी ठही वेंदो। अच्छा डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब अगर तुम अकेले लगाने चाहो था तो इनके लगाने जा तरीके का डाढ़ा आसान है, तुम करो पवन तुम फेस वॉश कर सब का पे तुम्हारे हथन के भी क्लीन रखना कर एक्नी वो जो मानू था उनके कुछ ज्यादा ही पानी चेहरे की केयर करनी पवी है, सो पाजे चेहरे के पाजे हथन के चंगे तरीके से क्लीन कर उनके सुबह जो तुम्हें रात जो यानी कि ब टाइम तुम्हें डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब लगानो पवो तुम लगाए तुम एहसास बाबा वाह जो प्रोडक्ट है एडो थदो थदो तक महसूस तुम्हारा एक्नी सफा उत मरी वो। इन के अलावा अगर तुम चेहरे से सफा घना एक्निया तो टे मरतबा लगे सो बी बी अला कड़ी गाल विसरी वही चलो याद अचे तो तो बिल्कुल जी पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और इसी के साथ साथ बताइए आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा ये भाई साहब कहते हैं अगर सैंडल जो निशान हो जाए वो भी रिमूव थी वेंदो तुम ट्राई तो करी दिसो लगे तो अधे जाम सैंडल्स खादा है।

0: अच्छा निधि कहती है वो सुना एल्विश भाई की आगे कोई बोल सकता है क्या एल्विश भाई? हाँ भाई वो भी सुना है, और मतलब मैं मीमर बंदा हूँ तो समझ सकते हैं आप।
1: जुताइयां वाली दिल उत्ते चोट की मैं दस्त मेरी की मचल में तो कुछ भी नहीं पता तू कितने कितने नाल
0: जी की तेरी बस खैर मंगदी पर मां यो भी मंगदी ते तमा वाइट एज प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो सही आ मकसूद मना कहते मेहरापुर से सिद्रा अभी मैं एक ख्वाब देख रहा था ये हर तरफ ढोल बज रहे थे फिर आंख खुली तो समझ आया ये 14 अगस्त चल रहा है और कहते हैं और जवाब देते हैं कि तीन अमरूद बाकी बचेंगे तीन अमरूद बचेंगे सही है भाई सही है और ये मौजूद है सलाम अलैकुम आपका शो वेरी नाइस है गोठ मोहम्मद तैयब थेबू से हबीबुल्ला थेबू भाई हमारे साथ है वेलकम करती भाई को ये किसी ने लिखा है सॉन्ग सुनाए कौन सा सॉन्ग सुनाए आप कौन हमारे साथ है ये तो लिखा ही नहीं बस सॉन्ग सुनाए हाजिर बाबा सॉन्ग बुझ रही हूँ ओके okay, टॉपिक को फॉलो करते रहिए और हमारे साथ साथ मौजूद रहिए। यहाँ पर किशोर भाई कहते हैं टॉपिक आंसर 3 अगर जो मैंने दो एप्पल्स उठाए हैं वो खाए ना हो तो 5 अगर खा भी गए तो वो भी तो आपके पास हुए ना अल्लाह जो किल्ला दिया जी
1: जुताइयां वाली दिल उत्ते चोट ये तेरा हाल दस की मैं दस मेरी की मचल में कुछ भी नहीं पता तू कितने कितने नाल धीरे धीरे तारे होने लगे के निशान
0: जनाब आप यहीं बैठे रहिएगा क्योंकि टाइम हो जाता है जरा हम जाएंगे यहाँ पर न्यूज ब्रेक की जाने उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले वापसी जल्दी आप लोगों के पास आएंगे तो सुनते रहिए एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे तक मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: Brought to you by
4: Sona Yulia Granular Mittiye jo maan vathai

पाकिस्तान समेत समूरी दुनिया में नौजवाननि जो अॼु आलमी ॾींहुं मल्हायो कयो वञे। सिंध जो नौजवान जदीद दौर में बि इल्म ऐं हुनर खां महरूम, हुनरी सिखिया लाइ जोगा इंतज़ाम न हुअण सबब नौजवान परेशानियुनि जो शिकार आहिनि। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त पाकिस्तान जे नौजवाननि जो अज़म, तवानाई ऐं तकनीकी सलाहियतूं क़ीमती असासो आहिनि। नौजवाननि खे बाइख़्तियार बणाइण वक़्त जी अहम ज़रूरत आहे। मयारी तालीम, बाइज़त रोज़गार ऐं जिदत नौजवाननि जूं गॾियल ख़्वाहिशूं आहिनि। सिंध हाई कोर्ट में टिन एडिशनल जजिस हलफ खणी वरितो। सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत एडिशनल जजिस खे हलफ खणायो। जस्टिस मोहम्मद हुमायूं खान, जस्टिस सुरेश कुमार ऐं जस्टिस शाहनवाज़ मेमण हलफ खयो। हलफ बरदारी जी तकरीर में जजिस ऐं सीनियर वकील शरीक थिया।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
3: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कर आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तियाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतों ने बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाय 2347-3141-230।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
8: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
9: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
8: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
9: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM
4: 90.4। पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
6: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
10: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
10: 03125257 86
6: जी हाँ 2315 5576
10: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

0: 8:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
5: सुनते रहो GFM 90.4।

ओके जी, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मिरपुर खास मटियार, ये सखर मेरा पर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं। वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। बिल्कुल जी, आप इस्तेमाल करेंगे और खूबसूरत हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ हम आ चुके हैं प्रोग्राम के दूसरे घंटे में, यहाँ पर आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है, बिल्कुल आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया था कि आप मुझे बताएं, आपके पास 5 एप्पल्स हैं, ठीक है, आपने 2 उठा लिए, बाकी आपके पास कितने बचते हैं? और बच्चों वाला सवाल पूछा है, चलें कोई बात नहीं, कभी कभी हम बच्चे बन जाएंगे। उनके अलावा अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करें चाहिए था तो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में सबक हाँ पहरी कुछ गालियों आयन जी तवे खबर अचण जरूरी है। छो तो कुछ मानन जी या थोड़ी कड़ी आदत हूँ मैं नोट कई उन्हें माण्डन के ना मतलब कुछ खबर ही ना होंगी जो प्रोडक्ट तुम इस्तेमाल कहता आयो उनके बारे में तुम्हें नॉलेज ना होंगी। अगर तक पुछो वा तो बाबा ही प्रोडक्ट तुम छो इस्तेमाल कर पाया तो उ सिर्फ यो चवन तो बस डिठी ए दुकान वे डिनी तो बस वी हल आयासी इस्तेमाल क्यों पाया खबर तो उनका बाद में उनकी स्किन से इलाही सारा साइड इफेक्ट्स अची वा उनकी मेन वजह यह होंगी तो तक उन प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ना होंगी, तक खबर ना होंगी तो तक कड़ो प्रोडक्ट इस्तेमाल करण घुर्ज कड़ो न इस्तेमाल करण घुर्ज। इन ही चीजों की वजह से तक वे ये लगन तो सब क्रीमू तो बाबा अड़ी ही होंदू अव बाबा पैरी गाल तो सब क्रीमू अड़ी ना होंदू वो तवी स्किन के हिसाब से तक बुधाई आया तो तक कुछ चीजों को ख्याल करो पव कुछ चीजों को ख्याल अगर तुम कंदा तवे पांजे खूबसूरती की खबर होजे तो बाबा अस कि खूबसूरत थी सकूं था असाजी स्किन कड़ी टोन की है तदी वही तवा के सफा सही वालों जो ना रिजल्ट मिली सके तो। सो अगर अस इतने डी स्किन ब्यूटी क्रीम की गाल क्यों था तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम में तक ब प्रोडक्ट मिलन था, एक डी स्किन ब्यूटी क्रीम है डी स्किन जो फेस वॉश है। बिल्कुल जनाब, अगर तुम डी स्किन की ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करण चाहो था तो तुम बिल्कुल इस्तेमाल कर सको था। अगर तुम डी स्किन जो फेस वॉश इस्तेमाल करण चाहो था तो तुम वो भी इस्तेमाल कर सको था। सो इन बिन्हीं प्रोडक्ट में कड़ी तवी स्किन के लिए जरूरी चीजों आन उसे तवा से शेयर कदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तक खबर होजन घुर्जे तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है हि बाबा मेडिकेटेड फार्मूलो है, इनके डॉक्टर की निगरानी के अंदर तैयार किया वो है, खास कर उन मे स्किन के मुताबिक जिनके चेहरे की स्किन काफी सेंसिटिव होंगी है। सेंसिटिव स्किन से मुराद ही जिनके चेहरे से कोई भी प्रोडक्ट सूट ना कह कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कह तो तवे चेहरे से एकनी अची वा स्किन रेड थी वी है, तो उन सूरत में तवी स्किन जो है ना अड़ो प्रोडक्ट तवाजी स्किन चाहे थी तो तवा इस्तेमाल कयो कोई मेडिकेटेड फार्मूलो हुजे कोई लाइट वेटेड फार्मूलो हुजे जेको तवा इस्तेमाल कयो आयु तवाजी स्किन ते सूट करे वने। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आए बाबा जेका तवा इस्तेमाल करे सगो था। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेको सफा प्रीमियम क्वालिटी जो प्रोडक्ट आए डी स्किन ब्यूटी क्रीम न सिर्फ पाकिस्तान में तवा के मिली वेंदी बल्कि बाहर के मुमालकात में भी तवा के मिली सके थी। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम पाकिस्तान का अलावा बाहर के मुल्कन में भी अवेलेबल आए। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका वाइटामिन बीट्स से तैयार थियल है, वाइटामिन बीट्स अथस माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन अथस अल्फा आर्बुटीन कोजिक एसिड ग्लूटाथायोन ये सब चीजों डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर एड थियल है। ये सब चीजों एड थियण जो मकसद यो है तवाजी स्किन के मुताबिक जो है वो तवा के निखार मिली सके। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो सिर्फ ब रातन में तवा के सफा बेहतरीन रिजल्ट दे पाई, अगर तुम सिर्फ ब रातू इस्तेमाल कर पाया तो तक सफा भलो रिजल्ट मिली वो। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तुम इस्तेमाल कर न मिलने की सूरत में तुम नंबर मौजूद होजन जरूरी है जिनसे तुम बस राबो कर करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल थी वन। सो वा सिटीज हूं उन्होंने में तो तक आराम से मिली वो, पर जी वेचारा मू अस गोठन में बुधा कुछ सिटीज अड़ा जिते अजा तक अवेलेबल न थो है तो तुम उत अवेलेबल कराए सो आसानी से। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल कराने के लिए बस तक डायल करो पव 03-12-50-25-907 नंबर है 03-273-8-4309 ये उ नंबर से डायल करी करीबी जनरल स्टोर से आराम से इजीली वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजन या डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजन तमा अवेलेबल कराए सको था। सो जल्दी जल्दी अवेलेबल करायो, पाने खूबसूरती जो ख्याल रखो बाबा आयु नखा अलावा इस्तेमाल कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम। डी स्किन ब्यूटी क्रीम सफा जबरदस्त प्रोडक्ट अव तुम इस्तेमाल कर तक मजो अची वो तो इस्तेमाल कर बुधाओ तक रिजल्ट कि मिलन पाया जी मूँ अ सोचन पाया इस्तेमाल कदासी बाबा जल्दी कयो।

है क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना, एंजॉय कीजिए और आप ज्यादा से ज्यादा पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। अच्छा क्या पेज में इशू है बताएं मुझे जल्दी।

जी क्या बात है, बहुत ही यहाँ पर अच्छे अच्छे आप लोगों के कमेंट्स हैं जिनकी जानिब हम आ जाएंगे। अच्छा तो हमारे साथ हैं जी हाँ नदरी गाना लगाते हैं जी आपके लिए, आप टेंशन नहीं क्यों ले रही है। सादिया कहती है व्हाइट एश की लवली क्रीम यूज करती हूँ, बिल्कुल जी आप यूज कीजिए। अली मुर्तजा कहते हैं नकर सिदरा नकर लगे थो तो बस छड़े साड़े। हिताजला कहते हैं कि सुर बने या आदत बने बने सॉन्ग हलाए जो हाजिर हाजिर हलायू था। और दर्द दिल कहती है अमेजिंग है व्हाइट एज की लवली क्रीम। हाँ जी बिल्कुल बहुत अच्छी है, आप इस्तेमाल करके देखिएगा। और ये किशोर भाई कहते हैं कि एड़ो गाने में ढिचक ढिचक न हूं आप केतरो तू मुख्य तलाश हुई लाइक बुधड़ में तो मुख्य हेडफोन्स लगल हूं शायद इन वजह से मर जाए। बाकी हाँ तुम डिपेंड करे तो तुम कि बुधन आयो बाबा असा फुल इको वारा मानू आ इको में हल्द अच्छा एमन सारी कहते हैं मुख्य नंढे होंदे खां ई दिल में धक लगो उन लाइ कड़ो प्रोडक्ट आ उन लाइ तव्हांखे खाइणो पवंदो छो त ज़ाहिरा दिल जो धक ठीकु करणो आहे न पर ॿुधाईंदमि छा ख़बर खाई वेठो अखलाक भाई कहते हैं डी स्किन बाबा डी स्किन हाज़िर हाज़िर डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां इस्तेमाल कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे ॾाढो भलो रिज़ल्ट ॾींदी। उन खां अलावा जेकी जेकी माण्हू डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे रहिया आहिनि बिल्कुल ई तारीफ़ कनि पिया। अच्छा अवेलेबल जो वाकई मतलब हूंदो आहे कॾहिं कॾहिं कुझु ॻाल्हियूं मूंखे पंहिंजो ई समुझ में न ईंदियूं, तव्हांखे कीअं समुझ में ईंदियूं। जाम तालिब सोलंकी भाई मोरो खां तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया। अदी दिलशेर तेवणो जो कलाम ॿुधाईंदा तव्हांजी महिरबानी, नवाज़िश थींदी, प्रोग्राम तमामु ज़बरदस्त आहे। थैंक यू वेरी मच प्यारा भाउ, तव्हांजी मोहबतूं आहिनि। अच्छा कहिड़ो पेज में इशू आहे उहो ॿुधायो त नथा, मूंखे सिर्फ़ इहो था ॿुधायो त पेज में इशू आहे, कहिड़ो इशू आहे इहो बि त ॿुधाइजे, ख़बर पए बाबा मसलो कहिड़ो आहे।

ओके जनाब, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। व्हाइट एशियन डे स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो यहाँ पर आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ

0: अलाए कुछ को ना ये उहा वाली कार थी वे ना जेको असा के मतलब कुछ अगर थिंदो है त असा चना अलाए छा थो थे अलाए छा थो थे अगलो मानो पछना पापा छा थो थे चना अलाए छा थो थे तई उहा वाली कार थी वे प्रॉब्लम आए मसलो पर केडो मसलो हुआ खबर कोने का सो बुधायो बाबा केडो मसलो पेज में जे असा खबर पई असा समझी सगो ना त छा हले पयो मुल्क जान में इन के अलावा पोस्ट के तवा लाइक शेयर कयो पया मोहम्मद आरिफ बलोच हमारे साथ है
1: शराब जदों पींदे सी असी दुनिया तो वखरे
0: ओके जी सो भाई जान आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है थैंक यू आप हमारे साथ हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिएगा

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

गानो ॿुधणो हुजे त थोरो पहिरियां ॿुधाए छॾींदा, लास्ट लिंक में गाने जी तव्हांखे कॾहिं बि फरमाइश न आहे करणी, हिकिड़ो रूल आहे, सम्झो था। सो बिल्कुल तव्हां असांजे प्रोग्राम में मौजूद आहियो, ये हमारे साथ हैं जी फज़ीला सिंधी, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी वेडनेसडे आफ्टरनून। माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सित्रा मुस्कान, आप कैसी हैं? मां सफा भली आया था, बुधाए कि आयो इतनी सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम इन कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स के नाम। ओके जी, सबको वेलकम कहा जाता है।

बिल्कुल साईं बिल्कुल ॾाढो भलो गानो तव्हां ॿुधो था पर तव्हांखे छा करणो आहे तव्हांखे पोस्ट खे लाइक एंड शेयर करणो आहे उन खां अलावा हिते असां सां गॾु मौजूद आहे जी अली मुर्तज़ा लिखते हैं कि तुम मुझसे रंजिशे भी रखती हो इख़्तिलाफ़ भी रखती हो और कुछ ऐन शीन ख्वाब भी रखती हो वाह साईं वाह साईं वाह ॾाढो भलो मैसेज ॾाढी भली शायरी किशोर भाई लिखते हैं कि कभी कभी तो मेरा खुद से मिलने को दिल करता है कभी कभी तो मेरा खुद से मिलने को दिल करता है मैंने बहुत कुछ सुन रखा है अपने बारे में आए हाय अब्दुल गफार भाई हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम कहते हैं प्यारे भाई जान आप भी सलामत रहे हमेशा और अख्तियार अली सिंधी हमारे साथ ही प्रोग्राम सुन रहे हैं आपको खुश आमदीद कहा जाता है नदी कहती है कि मैं हूँ ना फेस वॉश लवर मैं यूज करती हूँ बहुत अच्छा है फेस वॉश व्हाइट एज फेस वॉश ओके जी इस्तेमाल करती रहिए और हमारे साथ मेहताब अली इंटर भाई मेहताब भाई वालेकुम अस्सलाम कैसे ठीक ठाक है मजे में और जी कमर जमान बलोच कहते हैं अब तारे नहीं गिनते अब जागा नहीं करते खुश्क पत्तों की आवाज पे दरवाजे की तरफ नंगे पांव अब भागा नहीं करते वाह वाह वाह वाह

अच्छा बिल्कुल यही गाल है सभी क्यों लगन बन जा अगर कॉमेंट पढ़ने तो लगे तो सभी जा कन बंद हूं दायन, पर तांचो पढ़ने तो सभी जा कन खुली वेंदा है ये छो मुखे लगन दो इतना सारा मानो मुझे प्रोग्राम में हुंदा मैं सभी जा कॉमेंट्स पढ़ंदी आया पर कोई भी छोड़ो छोड़ो इग्नोर मारो और आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा डी स्किन ब्यूटी क्रीम से अगर तुम्हें खबर है तो डी स्किन जो फेस वॉश भी तुम्हें मिले पो सो सुना डी स्किन जो फेस वॉश भी तुम्हारे लिए अवेलेबल आई अगर तुम मार्केट वनो तो खाली इतना मोटू जो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम से अगर तुम्हें डी स्किन जो फेस वॉश भी परचेज करो पवन डी स्किन जो फेस वॉश अगर तुम्हें बुधाई हल तो डी स्किन जो फेस वॉश है ढो जबरदस्त फेस वॉश है जैसे तुम डी स्किन जो फेस वॉश इस्तेमाल कदा तो तुम्हें इाल खबर पेजी वेंदी तो डी स्किन जो फेस वॉश एतरी जबरदस्त क्वालिटी से तैयार थो है अगर तुम्हारी स्किन से प्रॉब्लम्स आए निशाना अची वा तुम्हारी स्किन की जी रंगत थोड़ी डिम थी वेंदी है या फिर ये भी कई मरतबा तो तीन उम्र का सफा घना वा लगन स्टार्ट वेंदा अगर ये मसाला तुम से गड मौजूद है तो कदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम से गड डी स्किन जो फेस वॉश मिली पो तुम्हें आराम से तेजे करीबी जनरल स्टोर से वही परचेज कर सो डी स्किन जो फेस वॉश है ना यो हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार थियल है जो तुम्हारी स्किन के मॉइस्चराइज कह डीपली हाइड्रेट कह तुम्हारी स्किन के क्लीन भी रख है सो मर्द मायो सभी हणी सन था जनाब ऑल स्किन टाइप जिलाए आहे सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश डाडो जबरदस्त कॉम्बिनेशन आहे ट्राई करे दिस जो मजो अची वेंदव अच्छा मुखे के फायजाली जी गाने जी फरमाइश करी छडी हुई सो ही गानो उनके डेडिकेट अच्छा साकिब अली पमर हमारी साथी वालेकुम अस्सलाम कहती है मैं मायरा हूँ अच्छा मायरा वालेकुम अस्सलाम आपको वेलकम कहा जाता कहती हाय अला आपकी आवाज सुनकर सुकून मिलता है मुझे भूल तो नहीं गई है ना आप नहीं नहीं आप मायरा याद है मुझे बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है और आपने शायद कोई गाने की फरमाइश कर दी मैं कोशिश करती हूँ टाइम बच गया तो आपका गाना लगा देंगे

अच्छा, हमारे साथ है महबूब अली मोरो सिटी से हमारी प्यारी सिस्टर सिद्रा मुस्कान। वालेकुम अस्सलाम, हेलो, हमेशा मुस्कुराती रहिए, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, वीआईपी प्रोग्राम। ओ क्या बात है, सो नाइस ऑफ यू सिस्टर। फायजा का नया गाना तो लगाइएगा, थैंक्स फरमाइश अली रजा भंड की है। ओके जी, गाना एंजॉय करें मेरे प्यारे भाई। थरी मीरवा से हमारे साथ हैं जी महबूब अली शर, रिजवान अली, इमरान अली शर, प्लीज मुमताज मोलाई सुनाइएगा। और डी स्किन वीआईपी आए, डी स्किन वीआईपी आए लगे तो तुम्हारा डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल किया है। एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम से अगर तुम्हारा डी स्किन जो फेस वॉश भी ट्राई करी सको था, समझो था, सो डी स्किन जो फेस वॉश भी तुम्हारा लगाए तो ढो मजो अची वो। अच्छा, कदें कदें सोची मैं यू छो चुने ढो मजो अची वो। मतलब तुम्हें जड़ी खूबसूरती मिली तो सैटिस्फाइड थी वादा तो तक वाकई मजो ही ना, तुम सोचिंदा तो बाबा वाह वाह वाह ढी मजे की स्किन थी वही है। सो बिल्कुल उन ही वे में। अच्छा तनवीर कहते हैं बाची अब्दुल रऊफ मक्सी का सॉन्ग तो सुनाए। तनवीर भा बिल्कुल हलाइन की कोशिश कयूं था, थैंक यू तुम्हारा सा गड आयो। मकसूद मल्हा कहते हैं आदाब आदाब, आपका शो लाजवाब है और आपकी आवाज बेमिसाल है, थैंक यू। डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी बेमिसाल है, डी स्किन ब्यूटी क्रीम बिल्कुल इस्तेमाल करने वाले लोग ऐसा ही बोल रहे हैं। अल्ताफ बलोच जागचानी चाचू हमारे साथ है, प्ले चमन चमन जो गानों तसा बुद्धो से नी चाचा। आई तुम डेडिकेट किया है अजरा खोसो बिस्मिल एंड मी, सो थैंक यू। अच्छा ये केंजो पैनल ते खाली मैसेज मुख्य मिलियो न पढ़ा तो समझी वंजो, समझो। और जागजानी चाचू कहते हैं सेकंड मैसेज है फरीहा परवेज का जिंदगी तुझे ढूंढू कहाँ गाना लगाएं, डेडिकेट डॉक्टर नजमा तबस्सुम बिस्मिल रफीक एंड यू। अच्छा ही सॉन्ग मां तुम्हें जिको ना पंज बजे वाले प्रोग्राम में बुधराई।

ताहिरा भी हमारे साथ कहती है अस्सलाम वालेकुम, आपको कैसी हो, आपका शो सुन रही हूँ ताहिरा, थैंक यू वेरी मच मेरी जान आप हमारे साथ है। प्रोग्राम में आपको वेलकम कहा जाता है और ऐसे ही आप जी स्किन प्योरी क्रीम और जी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करती रहे और इनका अलावा एसन कहते हैं

0: काफी ब्यूटीफुल सा गाना हमने इंजॉय किया और साथ ही साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। YJ इंडिया स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है YJ ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में तो आप जान ही चुके हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसी क्रीम है जो कि आप लोगों को दो रातों में जो है ना बहुत अच्छे वाले रिजल्ट दे रही है। मेडिकेटेड फार्मूला है और जनाब डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है। इसके अंदर वो तमाम चीजें ऐड की गई है जो कि आपकी खूबसूरती को बढ़ा रही है।
1: दिल जान पाकिस्तान जश्ने आज सब आवाम
0: और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आप बिल्कुल गुड़ गाएंगे जैसे लोग बोल रहे हैं। भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम बेमिसाल, आए हाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो, डी स्किन फेस वॉश लगायो, सफा सोना सोना थी बनियो। अच्छा अली मुर्तजा कहते इतने सारे एड्स एक भी वैसे आप किसी डॉक्टर से मशवरा कर ले, क्या पता इस मसले का हल निकल ही आए। अच्छा कमर जमान बलोच भात जो मोहब्बत हुआ प्रोग्राम बुधो पया हैप्पी कहती है वाह वाह शो तो बहुत अच्छा है, थैंक यू हैप्पी गर्ल। अच्छा जवार मोहम्मद बचल चंबानी भाई हमारे साथ मौजूद है, भाई को वेलकम कहा जाता है वालेकुम अस्सलाम के साथ साथ। मायरा कहती हैं तरक्या बाबा शाम को भी आप शो करती हैं, हाँ जी बिल्कुल शाम को भी शो करती हूँ और आप हमारे साथ हैं, थैंक यू।

0: जी बिल्कुल, मास्टर मंजूर साहब लिस्ट में मौजूद थे और लास्ट में ये वाला गाना मैंने जो था ना वो क्यू करके लगा लिया था। ये मुझे शायद हिदायत अहमदानी ने फरमाइश कर दी थी, तो मिलकर इस गाने को भी इंजॉय करेंगे। इसके साथ साथ हमारे जाने का वक्त भी बिल्कुल करीब आ चुका है और आज के जो प्रोग्राम का टॉपिक था उसका जवाब तो तकरीबन आप सब लोगों ने ही सही दे दिया है। भाई इतना आसान है, इतना बच्चों वाला सवाल पूछा था। तो अगर आपके पास 5 एप्पल्स मौजूद हैं, ठीक है, आपने 2 उठा लिए और आपके पास कितने बचे, तो जाहिर सी बात है आपके पास 5 ही बचे, क्योंकि 2 उठा लिए तो वो भी तो आप ही के पास है ना, तो 5 ही बचते हैं। ये इस सवाल का जवाब था और आप तमाम तरह
1: मुकम्मल खात्मा फसल रहे।
0: क्या बात है जी, माशाल्लाह बहुत होशियार हो चुके हैं आप लोग और ये सारा कमाल इसी वजह से है कि आप हमारा प्रोग्राम डेली सुनते हैं। अच्छा ओके, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी इस्तेमाल करें, डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहिए आदत भी तुम डेली अपनायो बाबा। डेली अगर तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना पौधा वाह वाह थी मुल्क में, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिका पाकिस्तान से गडो गड बाहर के मुल्क में भी अवेलेबल है, यानी इन चीज से तुम अंदाजो लगा था बाबा ही केडो प्रीमियम क्वालिटी वो प्रोडक्ट्स है जो तुम इस्तेमाल कर सदा ही तुम्हारी खूबसूरती सफा नेक्स्ट लेवल से हली वी। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो मर्द मायू सभी इस्तेमाल कर सकन था। दर्द दिल कहती है चंदा का शो सुनने की आदत जो है, हाँ बाबा या आदत तेज ताई तो न वे जेस ताई माँ शो कंदी रहा भले वे जद माँ हली वन सो हाँ भी माँ वना पई बिल्कुल तमा का मोकल वी वरी इन तमाम सा मिलूं था बाबा 5 बजे वाली प्रोग्राम में। सो 5 बजे वाली प्रोग्राम में ज्वाइन कदा पाँच बजे सरों ख्याल रखना किथे का गलती थी हुए तो माजरत क्यों था, जो फीडबैक रही वो है जो गानड़ो रही वो है सभी को माजरत क्यों था। सो मोकल ना बाबू सन सलामत सा सलामत। Love you all and take care.

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार पारां रेड सी में वापारी जहाज ते हुसैन जे हमले जी मज़म्मत बहरी जहाज ते हमले में टिन पाकिस्तानी जे शहीद ऐं हिक जे ज़ख़्मी थियण जी बि तस्दीक करे छॾी। इसहाक़ डार चयो आहे त अहिड़ा हमला बेगुनाह इंसाननि ऐं बहरी सलामती लाइ संगीन ख़तरो आहिनि। पाकिस्तान सऊदी ऐं यमनी हुकूमत सां राब्ते में आहियूं। रियाज में सफ़ारतखाने खे मड़नि जे ॾेह वापसी ऐं ज़ख़्मियुनि जी बहितरीन इलाज लाइ हिदायतूं जारी कयूं आहिनि। पाकिस्तान सऊदी क़यादत में बहरी सलामती लाइ क़ाइम बहरी इतिहाद जो हिसो आहे। सप्लाई चीन ऐं बहरी सफ़र जे तहफ़ लाइ इतिहाद जे बदरनामे ते अमल करण लाइ सहकार लाइ तयार आहिनि। परडे॒ही तर्जुमान ताहिर हुसैन अंद्रावी चयो आहे त मके दिफ़ाई मुआहिदो वाइज़े आहे। हिक मुल्क खे हमले ते टिन्ही मुल्कनि ते हमिलो सम्झो वेंदो। मके मुआहिदे तहत ख़िते जी सलामती अमुन लाइ कोशिशूं जारी रखियूं वेंदियूं। मुआहिदो अमन ऐं सलामती बाबति रुगो टिनि मुल्कनि ताईं महदूद नाहे। ख़िते में अमुन वारियूं कोशिशूं बि जारी आहिनि। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जे ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान सां तहरान में ईरानी सदर सां मुलाक़ात। ॿिनि तरफ़नि लाॻापन ख़िते जी सूरतयाल ते ॻाल्हियूं। ज़रियनि मूजिबि मोहसिन नक़वी वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जो ख़ासि पैगाम ईरानी सदर ताईं पहुचायो ऐं पाकिस्तान सऊदी ऐं तुर्किया विच में थियल मके दिफ़ाई मुआहिदे बाबति बि आगाह कयो। ख़िते में जारी छिकताण जे ख़ात्मे जे हवाले सां बि तफ़सीली ॻाल्हियूं कयूं वयूं। ॿिन्ही अॻवाननि मौजूदा सूरतयाल में राब्तनि में रहण ते बि इतफ़ाक़ कयो।
4: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
5: What
4: is the nature of the threat? I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats.
3: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तुर्किया में थियल नेटो इजलास बाद जहाज तब्दील करे सफ़र करण जी तस्दीक करे छॾी। मीडिया सां ॻाल्हाईंदे डोनाल्ड ट्रंप चयो त मूंखे घणो ख़तरो आहे। तुर्किया मां वापसीअ ते ॿिए जहाज़ में सफ़र कयो हो। ॿिए जहाज में सफ़र जो फ़ैसिलो सीक्रेट सर्विस ऐं फ़ौज जे मशवरे ते कयो हो। ईरान ते भरोसो नाहे, लगातार कूड़ ॻाल्हाए रहियो आहे। ईरान सां मामला ठीक हली रहिया आहिनि। आबना हरमुज़ ते अमरीका जो कंट्रोल मुकमिल आहे। अमेरिकी फ़ौज असांजे उमीदनि खां बि वधीक कमज़ोर निकिती। अमेरिका सां जंग में वधीक तजुर्बो हासिल कयो आहे, जेको मुस्तक़बिल जे जंगी हिकमत हमले लाइ अहम साबित थी सघे थो। पासदारन इनकलाब जे कमांडर जे सलाहकार मोहम्मद रज़ा चयो आहे त अमेरिका सां जंग जेतिरी डिघी थींदी तजुर्बो वधीक हासिल थींदो। सूबा ठाहिण सां मुल्क टुटंदो न पर वधीक मज़बूत थींदो आहे। हिन वक़्तु मुल्क में नवनि सूबनि जो ठहण ज़रूरी आहे। इस्लामाबाद में तकरीब खे ख़िताब कंदे वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो त सूबनि जी ॻाल्हि ते इज़त ऐं गैरत जी ॻाल्हि थींदी आहे। गटर में किरी ॿार जे मरण ते गैरत छो नाहे जागंदी। वफ़ाक़ हर साल 8,884 अरब सूबनि खे ॾींदो आहे। समूरी रक़म सूबनि जे चइनि वॾनि वज़ीरनि खे मिली वेंदी आहे। यूसीज ताईं फंडस पहुचण जो को बि निज़ाम नाहे। पंजाब सिंध बलोचिस्तान ऐं केपीके जे केतिरनि ई मुल्कनि खां वॾा आहिनि। जॾहिं पाकिस्तान जी आबादी 3,70,00,000 हुई त सूबा 4 ठाहिया हुआ। हाणे आबादी 26,50,000,000 आहे, पोइ बि 4 सूबा आहिनि। पिंडी वाके जी शफ़ाफ़ जांच थी रही आहे। मुल्क खे अदम इस्तक़ाम जो शिकार थियण न ॾींदासीं। पीटीआई जी नफ़रत इंतिशार सबब कल ऐं 9 मई वारो वाकियो थियो। मुमकती वज़ीर तलाल चौधरी चयो आहे त पिंडी वाके में मुलविस शख़्स खे ज़हनी मरीज़ करार ॾेई वाके खां फ़रार नथो थी सघे। शख़्स ज़हनी मरीज़ हो त हुन पंहिंजे घर भातियुनि ते हमिलो छो न कयो। इंतिशारी सबब पीटीआई पाण खे ई माइनस करे रही आहे। हिन क़िस्म जी सियासत नथी हली सघे। सिंध हाई कोर्ट में टिन एडिशनल जजिस हलफ खणी वरितो। सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत एडिशनल जजिस खे हलफ खणायो। जस्टिस मोहम्मद हुमायूं खान, जस्टिस सुरेश कुमार ऐं जस्टिस शाहनवाज मेमण हलफ खयो। हलफ बरदारी जी तकरीब में जजिस ऐं सीनियर वकील शरीक थिया। सभिनी खे पंहिंजी ज़िमेवारी समझणी पवंदी, मसलनि जो गॾिजी हल कढणो पवंदो। पुलिस एहतसाब जो सख़्त निज़ाम आहे, 27,000 अहलकारनि ऐं आफ़िसरनि खे सज़ाऊं बि ॾिनियूं आहिनि। कराची में सिंध बार काउंसिल खे ख़िताब कंदे आई जी सिंध जावेद आलम मोडो चयो त पुलिस खे कंहिं सां बि ज़ाती मसलो न आहे हूंदो, राब्तनि में रहणु घुर्जे, कानून जे दायरे में कम करणु घुर्जे, वकीलनि खे थाणनि जो घेराव न करणु घुर्जे, सोच ऐं रवैये खे तब्दील करणो पवंदो।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
6: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जैसे मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अनाब शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
7: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम। सोना से है कामयाबी स्कीम।

0: 8:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज. सिंध की आवाज.
4: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया. सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए.
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4.

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी साथ तैयार कर आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
0: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हय में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐ बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
0: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-3-41-200 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842
3: खुशख़बरी खुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
3: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
6: सुनते रहो GFM 90.4

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by
2: सोना यूलिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई
3: गैर सलामती लाइ संगीन खतरो आहिनि। पाकिस्तान सऊदी ऐं यमनी हुकूमत सां राब्ते में आहियूं। रियाज में सफारतखाने खे मड़हनि जी ॾेह वापसी ऐं ज़ख़्मी जे बहितरीन इलाज लाइ हिदायतूं जारी कयूं आहिनि। पाकिस्तान सऊदी क़यादत में बहरी सलामती लाइ क़ाइम बहरी इतिहाद जो हिसो आहे। सप्लाई चीन ऐं बहरी सफ़र जे तहफ़ुज़ लाइ इतिहाद जे पधरनामे ते अमल करण लाइ सहकार लाइ तयार आहे। परॾेही तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदराबी चयो आहे त मके दिफ़ाई मुआहिदो वाज़े आहे। हिकु मुल्क जे हमले ते टिन्ही मुल्कनि ते हमिलो सम्झो वेंदो। मके मुआहिदे तहत ख़िते जी सलामती ऐं अमुन लाइ कोशिशूं जारी रखियूं वेंदियूं। मुआहिदो अमन ऐं सलामती बाबति रुगो टिन्ही मुल्कनि ताईं महदूद न आहे। ख़िते में अमुन वारियूं कोशिशूं बि जारी आहिनि। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान सां तहरान में ईरानी सदर सां मुलाक़ात। ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि ख़िते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। ज़रियनि मूजिबि मोहसिन नक़वी वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जो ख़ासि पैगाम ईरानी सदर ताईं पहुचायो ऐं पाकिस्तान सऊदी ऐं तुर्किया विच में थियल मके दिफ़ाई मुआहिदे बाबति बि आगाही कई। ख़िते में जारी छिकताण जे ख़ात्मे जे हवाले सां बि तफ़सीली ॻाल्हियूं कयूं वयूं। ॿिन्ही अॻवाननि मौजूदा सूरतहाल में राब्तनि में रहण ते बि इतफ़ाक़ कयो।
4: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go in a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
5: What was the nature of the threat?
4: I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats.
3: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तुर्किया में थियल नेटो इजलास बाद जहाज तब्दील करे सफ़र करण जी तसदीक करे छॾी। मीडिया सां ॻाल्हाईंदे डोनाल्ड ट्रंप चयो त मूंखे घणो ख़तरो आहे। तुर्किया मां वापसीअ ते ॿिए जहाज़ में सफ़र कयो हो। ॿिए जहाज़ में सफ़र जो फ़ैसिलो सीक्रेट सर्विस ऐं फ़ौज जे मशवरे ते कयो हो। ईरान ते भरोसो नाहे, लगातार कूड़ ॻाल्हाए रहियो आहे। ईरान सां मामला ठीक हली रहिया आहिनि। आबना हरमुज़ ते अमेरिका जो मुकमल कंट्रोल आहे। अमेरिकी फ़ौज असांजे उमीदनि खां बि वधीक कमज़ोर निकिती। अमेरिका सां जंग में वधीक तजुर्बो हासिल कयो आहे, जेको मुस्तक़बिल जे जंगी हिकमत अमली लाइ अहम साबित थी सघे थो। पासदारनि इनकलाब जे कमांडर जे सलाहकार मोहम्मद रज़ा चयो आहे त अमेरिका सां जंग जेतिरी डिघी थींदी तजुर्बो वधीक हासिल थींदो।

हिन वक़्त मुल्क में नवनि सूबनि जो ठहणु ज़रूरी आहे। इस्लामाबाद में तकरीर खे ख़िताब कंदे वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो त सूबनि जी ॻाल्हि ते इज़त ऐं ग़ैरत जी ॻाल्हि थींदी आहे। गटर में किरी ॿार जे मरण ते ग़ैरत छो नाहे जाॻंदी? वफ़ाक हर साल 8,884 अरब सूबनि खे ॾींदो आहे। समूरी रक़म सूबनि जे चइनि वॾनि वज़ीरनि खे मिली वेंदी आहे। यूसिस ताईं फंड्स पहुचण जो को बि निज़ाम नाहे। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान ऐं केपी जे केतिरनि ई मुल्कनि खां वॾा आहिनि। जॾहिं पाकिस्तान जी आबादी 3,70,00,000 हुई त 4 सूबा हुआ। हाणे आबादी 26.5 करोड़ आहे, पोइ बि 4 सूबा आहिनि।

पिंडी वाक़े जी शफ़ाफ़ जांच थी रही आहे। मुल्क खे अदम इस्तक़ाम जो शिकार थियण न ॾींदासीं। पीटीआई जी नफ़रत इंतिशार सबब कल ऐं 9 मई वारो वाक़ियो थियो। मुनक़िदी वज़ीर तलाल चौधरी चयो आहे त पिंडी वाक़े में मुलविस शख़्स खे ज़हनी मरीज़ करार ॾेई वाक़े खां फ़रार नथो थी सघिजे। शख़्स ज़हनी मरीज़ हो त हिन गर्भातियुनि ते हमिलो छो न कयो? इंतिशारी सियासी सबब पीटीआई पाण खे ई माइनस करे रही आहे। हिन वक़्त जी सियासत नथी हली सघे। सिंध हाई कोर्ट में टिन एडिशनल जजिस हलफ खणी वरितो। सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत एडिशनल जजिस खे हलफ खणायो। जस्टिस मोहम्मद हुमायूं खान, जस्टिस सुरेश कुमार ऐं जस्टिस शाहनवाज मेमण हलफ खयो। हलफ बरदारी जी तकरीर में जजिस ऐं सीनियर वकील शरीक थिया। सभिनी खे पंहिंजी ज़िमेवारी समझणी पवंदी, मसलनि जो गॾिजी हल करणो पवंदो। पुलिस एहतसाब जो सख़्त निज़ाम आहे। 27,000 अहलकारनि ऐं आफ़िसरनि खे सज़ाऊं बि ॾिनियूं आहिनि। कराची में सिंध बार काउंसिल खे ख़िताब कंदे आई जी सिंध जावेद आलम ओडो चयो त पुलिस खे कंहिं सां बि ज़ाती मसलो न हूंदो, राब्तनि में रहणु घुर्जे, कानून जे दायरे में कम करणु घुर्जे, वकीलनि खे थाणनि जो घेराव न करणु घुर्जे, सोच ऐं रवैये खे तब्दील करणो पवंदो। पंजाब में पीपल्स पार्टी कश्मीर जे ज़िले नायब सदर समेत 3 ॼणा क़तल। पीपी कश्मीर जो नायब सदर आलमगीर कोश, संदसि अज़ीज़ माशू कोश ऐं नाज़िम कोश पंजाब जे इलाइक़े दीनो शाह में हथियारबंदनि क़तल कयो। वारसनि जो चवण आहे त आलमगीर कोश ऐं संदसि साथी पंजाब जे अहमदपुर थाणे जी हद बोएवाड़ में यासीन जे घर में तरसियल हुआ। हथियारबंदनि हमिलो करे खेनि क़तल कयो। 30 ॼणनि खे क़तल कंदड़ जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। सन भरसां ॻोठाणे जो हिकु घर मां 5 ॾींहं पुराणो लाश हथायो आहे। पोरे तलीगुल बुरमाणीअ जो लाश ताज़ो मुसलमान थियल हक नवाज़ जे घर मां मिलियो। पुलिस जो चवण आहे त लाश ते ज़ाहिरी तौर तशद जा निशान न आहिनि मिलिया। पोस्टमार्टम बाद वधीक ख़बर पवंदी। पोरे जे वारसनि जो चवण आहे त अलीगुल जो लाश संदसि महंगवार दोस्त ताज़ो मुसलमान थियल हक नवाज़ जे घर मां मिलियो आहे। हक नवाज़ घर भातियुनि समेत घर छॾे फरार थी वियो आहे। जांच कराए इंसाफ़ ॾियारियो वञे।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी साथ तैयार कर आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश खबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
6: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे इत्तेहाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 03125252786।
4: जी हा 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: इन मिट्टी जा रंग रौनकू जरखेजी असाजे हारिय साईं ताहिन आबाद हाने इन जो अन्याब वधिक मान वधायण लाए तवा सा गड आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान बे नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अन्याब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: अमर सिंध जे सींध में

0: अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाए 2347-3141-200। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻण लाइ खु़शि ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी। मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
3: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
5: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंची है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाई।

0: हिंदी वाक्य जी शफाफ जांच थी रही है मुल्क के अदम इस्तेकाम जो शिकार थे नरीदासे पीटीआई जी नफरत इंतिशार सबब काल नव मई वारे वाक्य थे कौमलकती वजीर तलाल चौधरी चाहे तो पिंडी वाक्य में मुलविस शख्स के जहनी मरीज करार डेई वाक्य का फरार रथो थी सके शख्स जहनी मरीज हो तो उन घर भातियों से हमलो छो न कर इंतिशारी सियासत सबब पीटीआई पान के ही माइनस कर रही है इन किस्म की सियासत न थी हली सके।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो नथियन औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियन कमजोरी आई औरतुन ए बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-3-41-200।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
8: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
9: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
8: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
9: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
4: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
10: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
6: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन
10: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
10: 0331252576
6: जी हाँ 2315525786
10: GFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक, रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियण वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी। बेहतरीन रिजल्ट हासिल करण लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी इतने रिजल्ट हासिल कर

0: का सईद
1: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राओ दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी याद निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-43-842
3: खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
6: सुनते रहो GFM 90.4
7: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
7: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
7: 03132525786
1: जी हा 2315-2575-786
7: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: हिन मिटीअ जा रंग रौनकू ऐं ज़रख़ेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहियूं। सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ॿिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301343842।
5: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
6: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाए।
3: अमेरिका ईरान सठ डीं वाली जंगबंदी में वाद से इतफा करे वरतो। तुर्क खबरू उदारे मूजिब पाकिस्तान समेत टियाकड़ी कंदड़ मुल्क जो जंगबंदी वाली कोशिशों कामयाब थी। अमेरिका ईरान सठ डीं वाली जंगबंदी में वाद से रास्को जाहिर कर छो। बिन्हीं मुल्क पाकिस्तान समेत 40 मुल्क के भी आगाह किया है। बई मुल्क जंगबंदी मुआदे की वाद वरी तारीख से कम कर रहा है। अमेरिका ईरान विच में जंगबंदी वो मुआदो 17 अगस्त से खत्म थो है। पाकिस्तान में मुकर्र ईरानी सफीर रजा अमीरिया की नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात। बेतरफन लागापन समेत खिते की मौजूदा सूरत हाल से ख्याल की डे वठ। बिन्हीं अगवान जो खिते की सूरत हाल से राबतन में रहने से बेतफाक। इसहाक डार पाकिस्तान खिते की अमन इस्तेहकाम लाए कोशिशू जारी रखंदो।

पाकिस्तान रेड सी में बहरी बेड़े ते हुसिन जे हमले में टे पाकिस्तानियुनि जे शहीद थियण जी तस्दीक करे छॾी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पारां हमले जी मज़म्मत, परॾेही तर्जुमान चयो आहे त पाकिस्तान सऊदी क़यादत में बहरी सलामती लाइ क़ाइम बहरी इतिहाद जो हिसो आहे। सप्लाई चेन ऐं बहरी सफ़र जे तहफ़ुज़ लाइ इतिहाद जे पधरनामे ते अमल करण लाइ सहकार। मका दिफ़ाई माहिदो वाज़े आहे, हिक मुल्क खे हमले ते टिनी मुल्कनि ते हमिलो सम्झो वेंदो। मका माहिदे तहत खिते जी सलामती ऐं अमुन लाइ कोशिशूं जारी रखियूं वेंदियूं। मुआदो अमुन अमान ऐं सलामती बाबति रुगो टिन मुल्कनि ते महदूद न आहे, खिते में अमुन वारियूं कोशिशूं बि जारी आहिनि। वज़ीर आज़म पहिरीं यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीअ जो ऐलान करे छॾियो। शहबाज शरीफ़ चयो आहे त पॉलिसी तहत समूरी लेबर फोर्स में औरतुनि लाइ 35% कोटा हूंदी। हर साल स्टार्टअप लाइ 10% कोटा मुख़्तस कई वेंदी। नौजवाननि जे आलमी ॾींहं ते तक़रीब खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म चयो त अशराफ़िया जे ॿारनि खे तालीम जूं बहितर सहूलियतूं मिली वेंदियूं आहिनि। ग़रीब शागिर्दियाणियुनि खे तालीम जे मैदान में अॻिते आंदो पियो वञे। चाहियूं था त ॿियनि मुल्कनि जे मुक़ाबले में पोइते न रहूं।

सूबा ठाहिण सां मुल्क टुटंदो न पर वधीक मज़बूत थींदो। हिन वक़्त मुल्क में नवनि सूबनि जो ठहण ज़रूरी आहे। इस्लामाबाद में तकरीब खे ख़िताब कंदे वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो त सूबनि जी ॻाल्हि ते इज़त ऐं गैरत जी ॻाल्हि थींदी आहे। गटर में किरी ॿार जे मरण ते गैरत छो नाहे जाॻंदी। वफ़ाक़ हर साल 8,884 अरब सूबनि खे ॾींदो आहे। समूरी रक़म सूबनि जे चइनि वॾनि वज़ीरनि खे मिली वेंदी आहे। यूसीस ताईं फंड्स पहुचण जो को बि निज़ाम मौजूदु न आहे। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, ख़ैबर पख़्तूनख़्वा केतिरनि ई मुल्कनि खां वॾा आहिनि। जॾहिं पाकिस्तान जी आबादी 3,70,00,000 हुई त 4 सूबा हुआ। हाणे आबादी 26,50,000,000 आहे, पोइ बि 4 सूबा आहिनि। पिंडी वाके जी शफ़ाफ़ जांच थी रही आहे। मुल्क खे अदम इस्तेहकाम जो शिकार थियण न ॾींदासीं। पीटीआई जी नफ़रत ऐं इंतशार सबब काल ऐं 9 मई वारो वाकियो थियो। ममलकती वज़ीर तलाल चौधरी चयो त पिंडी वाके में मुलविस शख़्स खे ज़हनी मरीज़ करार ॾेई वाके खां फरार नथो थी सघिजे। शख़्स ज़हनी मरीज़ हो त हुन घर भातियुनि ते हमिलो छो न कयो। इंतशारी सियासत सबब पीटीआई पाण खे ई माइनस करे रही आहे। हिन क़िस्म जी सियासत नथी हली सघे। सिंध हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजिस हलफ खणी वरितो। सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत एडिशनल जजिस खे हलफ खणायो। जस्टिस मोहम्मद हुमायूं ख़ान, जस्टिस सुरेश कुमार ऐं जस्टिस शाहनवाज़ मेमण हलफ खयो। हलफ बरदारी जी तकरीब में जजिस ऐं सीनियर वकील शरीक थिया। आईजी सिंध जावेद आलम ओढो मीर रज़ा केस में पुलिस जी कोताहिन जो एतराफ़ करे वरितो। कराचीअ में सिंध बार काउंसिल जे तकरीब खे ख़िताब कंदे जावेद आलम ओढो चयो त मीर रज़ा जो क़तल अफ़सोसनाक आहे। केस में पुलिस खां कोताहियूं थियूं आहिनि। नई सिर जांच टीम केस ते कम करे रही आहे। मीर रज़ा जे वालदीन नई जांच ते एतमाद जो इज़हार कयो। केस में को बि दॿाउ नाहे, ग़लति फ़हमीअ जो बुनियादु हुई। पुराणी जांच टीम ख़िलाफ़ कानून मूजिब कार्रवाई कई वेंदी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: सोना सेहत कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
4: खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
5: अवां जे पंहिंजे शहर माखली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
5: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
8: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
9: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
1: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
10: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: इन मिट्टी जा रंग रौनकू जरखेजी असाजे हारिय साई ताहिन आबाद हाने इन जो अन्याब वधी का मान वधायन लाए तमासा गड़ाए सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणू छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तियाबी करे फसल के अन्याब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
2: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन दीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाए बेशुमार कीमती इनाम।
4: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 247-3141-200
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर

0: कार्डियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरानी हाने रोजानो मरीजन जो इलाज कंदी। याद रखंदा निजामानी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलिल रहंदो। निजामानी मेडिकल सेंटर ते ओटी लेबोरेटरी ऐ फार्मेसी जी सहूलत मौजूद आहे। निजामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 310-31-43-842।
1: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अव्हांजे पंहिंजे शहर माथली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलत पिण सस्ते अघ मौजूद आहे।
2: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 0371-1800-3920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: कहाँ हो यार, मैं कब से तैयार बैठी हुई हूँ, तुम हमेशा लेट कर देते हो यार।
1: मैं नहीं आ सकता जन्नत।
0: क्यों?
1: मैं अभी शादी नहीं करना चाहता।
0: व्हाट? तुम्हें तो कहा था।
1: झूठ कहा था।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
1: yeah!

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट।
3: बलोचिस्तान जे इलाके सोराब में सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन है बारूदी मवाद जा धमाका 18 दहशतगर्द मारजी विया टे शहरी भी शहीद पाक फौज जा बच जवान जख्मी ISPR मौजिब बारूद से भरल गाड़ी तैयार करने दौरान जोरदार धमाको थो जै दौरान 8 दहशतगर्द मारजी विया केतरा ही जख्मी थे पिया बारूदी मवाद के धमाकन सबब इलाके में मौजूद टे शहरी भी शहीद थी विया फोर्सेस बलोचिस्तान पुलिस पहुंची गडियल क्लियरेंस ऑपरेशन कर सिक्योरिटी फोर्सेस की असरायती कार्रवाई दौरान 10 दहशतगर्द के मारे वो शदीद फायरिंग की डेवट दौरान ब बहादुर जवान पिण जख्मी थी पिया दहशतगर्दी के खात्मे वारे मुहिम पूरी ताकत से जारी रखी वेंदी।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842
3: खुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाव पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
3: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
5: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 03125252786
1: जी हा 2315525786
5: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।
0: मातली के हो तो

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
2: हाय हाय हाय।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनक असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी, करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।
1: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियणु, कमज़ोरी ऐं

0: कराए रहे आहे।
1: उनका अलावा असां वटि रेफरल जी सहूलत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
0: अवां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे।
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
0: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, FM 90.4।

0: नेटवर्क।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: बलूचिस्तान के इलाके सोराब में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन है बारूदी मवाद जा धमाका अरिड़हं दहशतगर्द मारिजी विया टे शहरी भी शहीद पाक फौज जा ॿ जवान जख्मी ISPR मूजिब बारूद सां भरियल गाॾी तयार करण दौरान ज़ोरदार धमाको थियो जंहिं दौरान 8 दहशतगर्द मारिजी विया ऐं केतिरा ज़ख्मी थी पिया बारूदी मवाद जे धमाकनि सबब इलाइक़े में मौजूद टे शहरी बि शहीद थी विया फोर्सेज ऐं बलूचिस्तान पुलिस पहुची गडियल क्लियरेंस ऑपरेशन कयो सिक्योरिटी फोर्सेज जी असरायती कार्रवाई दौरान वधीक ॾह मारियो वियो शदीद फायरिंग जी ॾेवठ दौरान ॿ बहादुर जवान पिण ज़ख़्मी थी पिया दहशतगर्दीअ जे ख़ात्मे वारी मुहिम पूरी ताक़त सां जारी रखी वेंदी अमरीका ऐं ईरान विच में जंगबंदी में 60 ॾींहनि जी वाधि थी आहे या न सूरतहाल अञा ताईं वाज़े न थी सघे तुर्क ख़बरू इदारे मूजिब पाकिस्तान समेत 40 मुल्कनि जूं जंगबंदीअ वारी कोशिशुनि सां अमरीका ऐं ईरान 60 ॾींहनि वारी जंगबंदी में वाद ते रास्तो ज़ाहिर करे छॾियो आहे ॿिन्ही मुल्कनि पाकिस्तान समेत 40 मुल्कनि खे बि आगाह कयो आहे ईरानी उहिदेदार तरदीद कंदे चयो आहे त अमरीका सां जंगबंदी में वाद ते के बि ॻाल्हियूं न आहिनि थियूं ईरानी सदन जो चवणु आहे त माहिदे जो मुदो शुरू ई न आहे थियो त जंगबंदी में वाद ते ॻाल्हियूं कीअं थींदियूं अमरीका माहिदे जे 48 कलाकनि खां पोइ भजकड़ी कई ऐं कुझु ॾींहनि खां पोइ माहिदे तां हथ खणी वियो हो ऐं अॻूणे वॾे वज़ीर सैयद क़ाइम अली शाह जी धीउ प्रोफेसर निगत शाह जी रिटायरमेंट JPMC फैकल्टी में ख़ुद शाह साम्हूं अची विया फैसले ते नज़रसानी करण सीनारटी मेरिट ऐं अहलियत जो मयार बरकरार रखण जो मुतालबो वज़ीला हाउस जे तर्जुमान जो चवणु आहे त निगत शाह जी 10 सालनि लाइ मुक़ररी पॉलिसी फ्रेमवर्क ऐं PMDC तर्फ़ां जारी थियल गाइडलाइन तहत निज कॉन्ट्रेक्ट बुनियाद ते कई वई आहे
4: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में ज़बरदस्त हवा रॉयल इन्वर्टर फैन
5: कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें।

0: इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतों ने बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-32-41-230।
7: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लगण लाइ खुश खबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लगरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लगराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी। मोबाइल नंबर 2301842।
9: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
10: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
9: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
10: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
9: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
10: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
9: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
10: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
7: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03312525780

0: It's 8:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सीनत जी लोक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3-41-230।
4: केश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड।

0: सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
1: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत मौजूदु आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713023920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रोबीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हय में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी

0: बीएस रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरानी हाने रोजानो मरीजन जो इलाज कंदी। याद रखंदा निजामानी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलिल रहंदो। निजामानी मेडिकल सेंटर ते ओटी लेबोरेटरी ऐ फार्मेसी जी सहूलत मौजूद आहे। निजामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
1: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अव्हां जे पंहिंजे शहर माटली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राबितो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 0371-1800-3920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: चिंद के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।